0: हम अपना संदेश जो आज बबली जी हम सबको सुना रहे हैं कि किस प्रकार से बर्तन और पर बबली जी इसमें मैं अभी मेरा दिल नहीं भरा ये सवाल से, क्योंकि जो भारत में जो कली कहलाते हैं ना, जो जो बर्तन को और चमक दे देते हैं, तो ऐसा शांता जी आपको ख्याल होंगे कि अगर आप कोवला क्रेक कभी गए, पोवाका गए, तो हमारे जो जंगल वाले जो वासी होते थे तो उन लोग का बर्तन एकदम भी चमाचम होते थे, ऐसा है कि ना?
1: हाँ, उसमें हम ना जाने वो सब किस तरह से बर्तन साफ करते थे, जंगल में जो क्रियोल रहते थे ना, वो सब इतना अच्छे से अपना बर्तन नदी के किनारे जाकर और सिर पर धर कर वो नदी किनारे जाकर और वो बर्तन माँजते थे। एक बात मैं बताऊँ, आप बर्तन माँजने के बात करते हैं, शहर में मेरी फ्रेंड के घर एक ऐसे ही व्यक्ति जो गई थी वहाँ पर, इंटीरियर हेल्प थे ना आज जो कहते हैं हेल्प इन हाउस होल्डिंग, तो वो जो हेल्प इन हाउस होल्डिंग था तो एक बर्तन वो पाई साफ करने के लिए, तो उसका रंत जो था जाने स्पेशल रंत रहे जो आप आगे पे धर दे और ना बहुत ना काला होए, वो व्यक्ति जो उसके पास घर में काम करते वो साफ कर करके एकदम से निकाल दी क्योंकि उसका आदत थी ना सब कुछ एकदम चमकना चाहिए बर्तन। हाँ, तो वो जब काम पे से घर पे गए तो देखे उसका बर्तन वाकई में अंदर से और बाहर से दोनों चमक गए
0: पर वो जरूरत नहीं था,
1: वो जरूरत
0: ऐसा होता है ना कभी कभी, जब पैंट आया जो फटा हुआ पैंट आया, फटा हुआ शर्ट आया, तो घर पे बच्चे खरीद करके पैंट और शर्ट लेकर आए, हाँ। कितना महंगा भर के, और माता पिता जो नहीं, पिता तो उस पर ध्यान नहीं देते पर माँ सोचते कि चलो इसका पैंट फटा हुआ है सी देते, और जबकि वो फैशन था। और इसी प्रकार से जैसे कि, पर ये प्रश्न मेरा अभी बाकी है शांता जी, अभी आपने उसके बारे में नीदरलैंड्स में कुछ कहने वाले थे कि किस चीज़ से वो बर्तन को कली देते थे।
1: आप जानते हैं गूगल मरहाच जो हमारे पास है जो इस वर्ल्ड वाइड में है ना, तो गूगल महाराज से अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो उस पर आप खोज लो, और इस तरह मैंने भी खोजी तो हमने पाई कि कली जो बबली जी कहते हैं साफ करता है तो वो स्वाफल सूर है,
0: स्वाफल सूर कहलाते हैं, और उससे चमक चमक धमक हो जाता था बर्तनों का
1: जी।
0: तो ये खेमी से प्रोडक्ट है ना?
1: हाँ, तो खेमी से प्रोडक्ट तो है,
0: और उसे चमक धमक हो जाता था, यानी कि कली कर देते थे अपने बर्तनों को,
2: यानी बर्तनों में भी नई जान आ जाती है, कली कर दो
1: जी,
0: नई जान आ जाती है।
2: हाँ जी
0: बबली जी, अभी आपको कुछ और भी संदेश हम सब के लिए रखना था।
2: हाँ जी जरूर, अब हम आगे बढ़ते हैं शांता जी।
1: हाँ जी,
2: स्टील के बर्तन,
1: स्टील का बर्तन जी,
2: जो आजकल सब ज्यादातर मंदिरों में घरों में इस्तेमाल होते हैं, स्टील के बर्तन नुकसानदायक नहीं होते, हाँ? क्योंकि ये ना ही गर्मी से क्रिया करते हैं और ना ही अम्ल से, इसलिए नुकसान नहीं होता। इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई फायदा नहीं पहुंचता, तो नुकसान भी नहीं पहुंचता, दोनों बराबर रहते हैं शांता जी,
1: बराबर एकदम। हाँ,
2: अब हम आगे चलते हैं एल्युमिनियम के बर्तन।
1: हाँ,
2: एल्युमिनियम बॉक्साइट का बना होता है,
0: तो एल्युमिनियम बॉक्साइट, बॉक्साइट बोले तो
1: बॉक्सिट, हाँ
0: हाँ, तो उसके और बढ़ने से, क्योंकि सूरीनाम में तो बहुत सालों तक और बॉक्सिट का और निकाला गया, और एल्युमिनियम यानी कि पहले जो खास करके फ्लिक्टॉय होते थे ना हवाई जहाज, सब एल्युमिनियम के बनाया जाता था, आजकल तो क्यों कुछ फ्लिक्टॉय है जो कंस्टॉफ को बनाया जाता है, और एल्युमिनियम एक का बोले मेटल सोर्स
2: था, धातु है ना। और ये भी शांता जी, और ये जो कुकर है भारत में, कहते गैस की बचत हो, खास की बचत हो, तो जो प्रेशर कुकर है दाल उसी में बनती ज्यादातर, वो भी एल्युमिनियम, तो
1: जी
2: हाँ जी,
0: तो एल्युमिनियम की ओर बढ़ने से पहले क्यों ना शांता जी का जो पिटारा से निकाला है वही गीत और

सुंदर सुंदर गीत सुनने वाले आपके लिए यहाँ सेलेक्ट करके रखी हूँ। और संजय जी जो मेन पैनल के पीछे है और आपके लिए चला देते हैं सुनने के लिए, साथ ही साथ हम भी यहाँ सुन रहे हैं। और आपको हार्दिक से स्वागत है एक बार फिर यहाँ पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, जो ज्योति का प्रकाश आपकी सेवा में है।

0: ब्रेक के बाद बबली जी उपस्थित हो गई है और आगे हमको सुनाएगी बर्तन के बारे में, कौन सा बर्तन में खाने से उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। बबली जी
1: जरूर शांता जी, अब मैं आप सबको बताऊंगी एल्युमिनियम के बर्तन।
0: एल्युमिनियम के बर्तन,
1: हाँ जी, एल्युमिनियम बॉक्साइट का बना होता है। इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ नुकसान होता है, यह आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसलिए इससे बने पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लीवर और नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचती है।
0: इतने सारे हानिकारक शरीर में,
1: हाँ जी,
0: एल्युमिनियम के बर्तन में।
1: और इसके साथ साथ किडनी फेल होना, टीबी, अस्थमा, दमा, बात रोग, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं।
0: हल्लो कल्लो बात।
1: एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर से खाना बनाने से 87% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, यानी 87 शांता जी।
0: इसके बारे में मैं सुनी हूँ कि प्रेशर कुकर में खाना बनाने से उसमें जो विटामिन है खाना का, उसका नुकसान होता है।
1: खाना जल्दी तो बन जाता है,
0: हाँ,
1: लेकिन
0: हानिकारक है
1: कि उसके जितने भी पोषक तत्व है सब नष्ट हो जाते हैं।
0: आपके घर में एल्युमिनियम का बर्तन है?
1: हाँ जी
0: है। और इसके बाद आप जो पढ़ के सुनाई है हमको, इसके बाद आप इस्तेमाल करोगे? ये प्रश्न हो जाता है।
1: है शांता जी, हाँ। दाल उसमें अच्छी बनती, मैं खाली दाल बनाती हूँ और कुछ नहीं बनाती।
2: पर कहने के तात्पर्य ये है शांता जी, इस बात को सुनकर मैं भी बहुत हैरान हूँ, क्योंकि पहले सूरीनाम में जब शुरुआत में जब हम लोग के समय पे,
0: हाँ?
2: और नौकरी मिलता था तो सबसे पहले एगो एल्युमिनियम के और एटन्स बक खरीदा जाता था ना, तो सभी के उसी प्रकार से एल्युमिनियम के बाकी होते थे,
0: हाँ?
2: और पर उसमें हम लोग सब दिन उसे प्रयोग किए हैं,
0: हाँ?
2: और बबली जी कुछ कहने वाले हैं?
1: मैं कह रही थी भारत में भी पहले सबसे पहले एल्युमिनियम के ऐसे टिफिन लोग लेके जाते थे,
0: हाँ हाँ।
1: पीतल के चले, फिर स्टील के चले, आजकल तो जिसमें खाना गर्म रहता है आजकल वो चलते हैं ऐसे।
2: तो कहने के तात्पर्य यह है कि उसमें अगर जब गर्माएंगे तो, और यानी कि उससे शायद कुछ हो सकेगा, पर ज्यादा तादाद में पहले तो एल्युमिनियम का,
1: हाँ, भारत में भी इस्तेमाल करते थे। शायद जो पतीला हो उसमें बनाने से होगा, खाली टिफिन में रखेंगे उससे नहीं होगा
2: ऐसा। तो आगे के क्या संदेश है? कहने के तात्पर्य है जो हमारे खोजी सेना है जो खोज करके और रखे हुए है, तो उस पे हम लोग को थोड़ा से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जरूर ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें हमारी खोजी सेना खोज करके और संदेश को रखते हैं और हम सब इसे और जरूर,
0: हाँ, और जरूर
2: प्रस्तुत करते हैं।
0: हाँ ना, इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अब बली जी ने कहा कि पहले

0: लोहा का हैंडलर जो है मेरे ख्याल से, और देख रही हूँ, सोचती हूँ आसान करने के लिए और बेचने के लिए तो ये अल्मीनियम के इस्तेमाल की है। आज के दौर में भी जो हम दुकान में जाते हैं देखते हैं और रिक्लाम भी देखते हैं, तो जो लोहा का हरिया है, पीतल का जो पहले ज़माने में इस्तेमाल हुआ करते थे, वो सब फिर वापस आ रहे हैं,
1: धीरे धीरे बिल्कुल वापस आ रहे हैं।
0: हाँ, वो सब वापस आ रहे हैं,
1: लोहा का भी।
0: हाँ, तो ये हमारे समझ में नहीं आता कि क्यों सब ऐसे करते हैं, पैसे के लिए करते हैं तो कितना हानिकारक होता है समाज और लोगों के लिए।
1: जरूर। और आगे का संदेश क्या है बबली?
2: हाँ जी, आगे क्या है, मिट्टी के बर्तन। शांता जी,
1: आजकल तो मिट्टी का बहुत चल पड़ा ना,
0: मिट्टी का बर्तन भारत में, और हम देखे तो तुर्कैये में, मारोको में वो सब मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं।
2: भारत में भी शांता जी, पंजाब में अपनी नानी यहाँ जाते थे तो मिट्टी के बर्तन में ऐसे एक हंडिया थी, उसमें वो दाल चढ़ा देते थे मेरी नानी, और मिट्टी के बर्तन में ही वो जाता दूध चढ़ाते थे, और दूध एकदम गुलाबी हो जाता था।
0: हाँ, उसका रंग उसमें आ जाता ना। हाँ, या
2: और घड़े तो होते से, मिट्टी हाँ। के देखो, जिसमें पानी भर के रखते हैं।
0: हाँ,
2: वो तो मिट्टी के हैं,
0: और जो उस मिट्टी के घड़े में पानी जो
2: ठंडा रहता है,
0: ठंडा रहता है, आपको कूलर की जरूरत नहीं पड़ता, यानी कि आइस कास्ट कूल कास्ट।
2: हाल में फ्रिज नहीं आए थे तो तब घड़े में सब पानी भर के रखते।
0: हाँ, देखो ना,
2: हम स्कूल जाते थे, स्कूल में भी घड़े होते थे।
0: हाँ,
2: तो जब जिसको प्यास लगी तो वहाँ पर जाके पानी पी लो।
0: तो सोचो ना, पहले कितना आसान से और कितना आसान तरीका से सब इस्तेमाल होते थे, और जो हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा था, और इसमें कितना बदलाव आ गए धीरे धीरे, और फिर से जो पहले इस्तेमाल हुआ करता था आज धीरे धीरे वो सब फिर से इस्तेमाल करने लगा है। इस बात इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ ना, टॉयलेट पॉट जो है, हाँ, भारत में सब ऐसे नीचे बैठे ना, कुकुर मुकुर ऐसे, हाँ, जो आज के दौर पर हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे, तो हमारा शरीर जो है, गोड़ जो है, वो कुकुर मुकुर बैठने के अब थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है। तो पहले ऐसे बैठ के, जाने जिस भारत में सब बैठ के शौचालय करते हैं, तो पेट एकदम से साफ हो जाता है, और यहाँ पर टॉयलेट पॉट बना दी है कि बैठकर ऐसे बैठकर शौचालय करो। तो अब वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि शौचालय जो होता है ना, वो पूरा तौर से नहीं निकलता है, साफ नहीं, पेट साफ नहीं होता है। अब विज्ञान लोग भी अब कहते हैं, जो भारत में जैसे लोग पहले बैठे थे आज में बैठे हैं, वैसे बैठकर शौचालय करो।
2: जो आजकल है ज्यादातर शौचालय, तो ऐसे दो ऐसे पत्थर होते थे शांता जी।
0: हाँ हाँ, अच्छा। हाँ,
2: तो वो पत्थर का ही था, मिट्टी का बना हुआ।
1: चलो, हाँ, ये कार्यक्रम में हम जोड़ देते हैं एक गीत जो, और कहीं हम भटक ना जाए अपने विषय से।
0: नहीं नहीं, भटके के बात नहीं है, बल हम ये इस पर ये कहना चाहती हूँ, पुराना तरीका से जो हम जीते थे उस समय पे, और आज में नहीं बल्कि कितने सालों से ये नई तरीका जो लाई है, और विज्ञानी लोग इसमें देखे नहीं कि पुराने जो है वो सही है।
1: और इसमें ये भी होते थे शांता जी, कहने के है कि आजकल देखो तो कितने लोगों के घुटनों का भी दर्द होता है ना, यानी कि स्पीर जो कनी आदि के
0: जी,
1: तो उसका भी शायद उसका भी कारण होगा कि कुछ जो हम लोग प्रयोग नहीं करते।
0: आप सही है संजय जी, आप सही है। हाँ, हम प्रयोग नहीं करते, हम तो चेयर पे बैठ जाते हैं, बांगस्तर पे कूद के बैठ जाते हैं। अरे, बांगस्तर पे भी कूद के बैठो तो पलटी मार के बैठो, ताकि जो बैठने के जो आसन है ना वो भी हो सकता है। पर या किस किस को मैं संभालू,
1: किस किस को हम संभालू। हम चलते हैं गीत की ओर, और गीत का बोल है कि रोटी कैसन रोटी किस प्रकार के होते हैं, सिर्फ गोल गोल होता ना?
2: रोटी गोल भी होती है, फिर कांद भी होती है, पराठा कह लो उसको, और ऐसे एक त्रिभुज भी होती है,
0: हाँ,
2: जैसे पिरामिड की तरह।
0: हाँ,
2: रोटी जैसे मर्जी बना लो,
0: रोटी जैसे मर्जी बना लो, पर
2: अपने ऊपर है।

0: रोटी किस प्रकार के होते हैं और रोटी के ओर बढ़ने से पहले नहीं, रोटी के ओर बढ़ेंगे नहीं बबली जी, क्योंकि अभी तो बर्तन के बारे में कुछ और संदेश है ना।
1: हाँ जी, मिट्टी के बर्तन,
0: मिट्टी के बर्तन के बारे में कुछ और संदेश है।
1: हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते सुनने वालों, मिट्टी के बर्तन। शांता जी।
2: जी हाँ, मिट्टी के बर्तन।
1: मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते हैं।
0: शांता जी, हम लोग सूरीनामा में मिट्टी के बर्तन होते थे। वैसे तो मैं खाना बनाता नहीं था और पर खा लेता था, पर मिट्टी का बर्तन मुझे नहीं ख्याल है।
2: मुझे भी नहीं।
0: सूरीनामा में ऐसा नहीं होते थे, वही बस मिट्टी का दिया आदि बनाया जाता था
2: जी,
0: पर
2: मिट्टी का बर्तन नहीं,
0: न जाने।
2: कलाई के बर्तन, कलाई के बर्तन
0: होते थे और प्लास्टिक आदि का भी,
2: लोहा, अल्युमिनियम, मिट्टी।
1: भारत में शांता जी,
2: हाँ जी,
1: मैंने देखा है शहरों में लोग नहीं इस्तेमाल करते थे मिट्टी के बर्तन, लेकिन गाँव के लोग इस्तेमाल करते थे। हम अपनी नानी यहाँ जाते थे, वहाँ पर मिट्टी के बर्तन में दाल बनती थी, दूध गर्म करते थे, मसाला पीसना है, सब मिट्टी के बर्तनों में होता था। और गाय भैंस को पानी वगैरह देना है, सब मिट्टी के बर्तन में होता था।
2: तो गांव के रहने वाले तो बहुत से तंदुरुस्त रहते थे।
1: हाँ, और दूध भी लोना है, छाछ सब कुछ बनता है, वो भी
2: मिट्टी के घड़ा में,
1: पानी में, घड़े में पानी रखते थे कि ठंडा रहे, सब कुछ मिट्टी के बर्तन। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं शांता जी।
2: जी,
1: मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते हैं। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है।
2: देखो
1: कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकाना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है। दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के बर्तन हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पूरे 100% पोषक तत्व मिलते हैं, और यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाए तो उसका अलग से स्वाद भी आता है। पानी पीने के पात्र में विशेष में भाव प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, जल पात्रम तु तम्रस्य तद्भावे मृदय हितम पवित्रम शीतलम पात्र रचितम सफ्टिकं यत कांचे रचितम तदत वैज्य संभवम। अर्थात पानी पीने के लिए तांबा, साफ्टिक अथवा कांच मात्र का उपयोग करना चाहिए, संभव हो तो वैजल जड़ित पात्र का उपयोग करें। इनके अभाव में मिट्टी के जल पात्र पवित्र व शीतल होते हैं। टूटे फूटे बर्तन से अथवा अंजलि से पानी कभी नहीं पीना चाहिए।
0: ये भी आपने सुनी, और हमारे संदेश जो रखा गया कि किस प्रकार से कितने बर्तनों का उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से आप उसे प्रयोग करें तो आपके लिए हानि या लाभ क्या है, उसमें और बातचीत किया गया। शांता जी, अभी तो बात ये है कि जैसे कि हम लोग मिट्टी का बर्तन सूरीनाम में नहीं जानते हैं ना, एल्युमिनियम के तो हम लोग खूब तादाद में जानते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के न सिर्फ वो जो ब्रोथ ट्रॉमल होते थे और भी बर्तन आदि होते थे ना, कुछ कुछ मेरे ख्याल से।
1: हाँ, पतीला, कढ़ाई, सब कुछ एल्युमिनियम।
0: जो एक कढ़ाई जो है सूरीनाम में जो बनाया गया, जो नीचे में गोल सा होता है, वो ज्यादा तादाद में सूरीनाम में बनाया जाता ना, एल्युमिनियम का।
2: हाँ, सूरीनाम से जब यहाँ पे निवासी, सूरीनाम के निवासी जो भी यहाँ आए ना, तो वो भी वही कढ़ाई, कढ़ैया जो कहते हैं ना।
0: हाँ, कोफर में अपन ले आए थे।
2: हाँ, वो सब लेकर आते थे, तावा भी लेकर आते थे, ऐसे कई कई चीज़ें जो सब वहाँ पे इस्तेमाल करते थे, और अपना सुविधा के लिए तो वहाँ पर सेल्फ भी लेकर आई है।
0: अपने सुविधा के लिए वहाँ से लेकर आए, और यहाँ पर क्योंकि वो इस प्रकार से बनाया गया है, क्योंकि सूरीनाम में जो चूल्हा होते थे ना, तो उस पे एकदम आराम से वो बैठ जाते थे, उसी माध्यम से मेरे ख्याल से वो बनाया गया वहाँ।
2: गुवेंती ना कि वो सब में बनावे के, और यहाँ पर आकर दूसरा तरीका से बनाना, दूसरा कढ़ैया हड़िया में बनाना, तो आसान नहीं लगते थे, स्वाद भी नहीं आते थे उससे, इसलिए सब वहाँ पर से जैसे सब गुवेंती ना गुवेंती, इसलिए वहाँ से सप्लाई।
0: तो शांता जी जो आप कह रहे हैं गुवेंती थे और लेकर के आए यहाँ पर, पर देखा जाए कि हमारे देश में तरक्की हो रहे हैं और कुछ समय बाद तो सिर्फ यहाँ इंडक्शन से खाना बनाया जाएगा, तो वो कढ़ाई यहाँ प्रयोग हो पाएगा?
2: वही तो दुखद की बात है, तो कढ़ाई तो अब यहाँ पर सब इंडक्शन हो गए, तब सब कढ़ाई कष्ट में रहता है।
1: नहीं शांता जी, काशी में नहीं जाएगी, आजकल तो चूल्हे आ गए हैं।
2: ओ हाँ,
1: वैसे मैंने देखा है, नहीं कहाँ देखा था, पर नहीं टीवी पे देखा है कि बने बनाए चूल्हे हैं, ऐसे लोग रख लेते हैं अपने घर में और उसके ऊपर खाना बनाते हैं।
2: इलेक्ट्रिक?
1: ना ना ना, वैसे ही है,
2: ओ गैस से।
1: हाँ हाँ, अरे इलेक्ट्रिक है कि क्या है पता नहीं, मैंने कहाँ देखा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, देखे है मैंने।
2: हाँ वो भी हो, हाँ सच में संजय जी कि ऐसे नहीं कि वो सब कास्ट में रह जाते हैं, नहीं पर प्रयोग कर सकते हैं। कितने तो घर में महंगे से महंगे किचन सेट बना कर धरते हैं और पाछे में एक अलग सा किचन बनाते हैं और वहाँ पर खाना बनाकर और सब गला कर घर में धरते हैं।
0: ऐसा होता है?
2: ऐसा होता है भी,
1: कोई कहते मसाला लग जाएगा, टाइल्स खराब हो जाएंगे, तो मसाला अंदर में नहीं खाना बनाते?
2: नहीं नहीं, स्पेशल सब बाहर बनाते हैं, स्क्यूर में, स्क्यूर में सब सजा देते हैंगा और किचन में बना देते हैंगा, तब वहाँ पर पका कर और डुक्सा जो छोंकता है और ऐसे ऐसे खाना।
0: चलो चलो थोड़ा सा गीत सुन लेते हैं।

0: दे, ये फिल्म जो पुराना फिल्म से निकाला गया एक गीत जिसमें और जाकर के खाने के खोज में बच्चे निकलते हैं ना। बबली जी, आज का कार्यक्रम में आज संदेश अपने रखे कि किस किस प्रकार के और पात्रों में खाना बनाना उचित है, यानी कि ठीक होते हैं और ना ठीक होता है भी। और शांता जी, इसमें हम लोगों ने भी कुछ और संदेश और भी और चीज़ों को और डाल दिया गया है कि जैसे कि सूरीनाम में हम लोगों किस प्रकार के पात्र में प्रयोग किया जाता था ना।
1: हाँ संजय जी, हाँ जो ऐसे ऐसे बात जो होते हैं ना तो हमको कैसे मारे जैतलैक मार दे रहे कि सूरीनामों में कैसे रहा, और जो फ्रांसिस जो हम जाते हैं भी अन्य देश में तो वहाँ पर भी हम देखते हैं तो ख्याल आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर भी आपके लिए आपके सामने उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
0: और ये जो अभी प्रश्न किया गया ना, पीतल, पीतल बोले जो कोपरा जो हम लोग के थाली होते थे ना सूरीनाम में, तो थाली में ज्यादा तादाद में कुछ बड़े लोग आते थे तो उसका खाना मिलता था उसमें ना,
1: है पहले पहले में। हाँ,
0: पीतल के थाली का बोलते थाली में खाने वाला का
1: जी।
0: बबली जी कुछ कहने वाले है?
2: मैं ये कह रही हूँ, मेरे को ध्यान आया कि हमारे घर में बड़े लोगों के लिए अलग से बर्तन होते थे। हमारी दादी, हमारी आजी के लिए पीतल का थाल, उनका गिलास, उनका चम्मच और कटोरी, उनमें खाते थे। और पापा और ताया जी के लिए, अरे दादा के लिए अलग से, और बच्चों के लिए थोड़े छोटे छोटे दूसरे बर्तन होते थे, हम लोग उसमें खाते थे।
0: तो शांता जी, इस पे आप क्या कहने वाले हैं?
1: हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अपन अपन रेखस भी होना चाहिए और उसमें जरूर से कुछ ना कुछ महत्व भी होगा ना।
2: हाँ, कि बड़ों की इज्जत करो, बड़ों के लिए थोड़े अच्छे बर्तन, थाल।
1: हाँ,
2: थाल आप जानते हो कि बड़ा होता
1: हाँ,
2: है
1: हाँ।
2: और पापा और उनसे थोड़े छोटे, ताया जी तो उनके लिए थोड़ा और छोटा
1: हाँ।
2: बच्चे छोटे
1: तो और छोटा,
2: तो बच्चों के लिए और छोटा।
0: तो सुन वालों, अगला गीत के ओर हम बढ़ेंगे और अगला

0: तारे के निभाना। सुनो जीवो मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, इस गीत के साथ आपको तो पता चल जाता है कि ज्योति का प्रकाश यहाँ से संपूर्ण को होने को आ गए हैं। और यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता के प्यार भरी नमस्कार।
1: अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।

मुख्य कार्यक्रम में सहयोग दिए शांता खिमई जी, बबली आसरा जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। साथ में और कनेक्ट हो गए थे हमारे कोलेखा साथी अनुराधा जी। आशा ये रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। अगर कुछ टूटिया भी हो गए होंगे तो क्षमा कर देना। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

1970 में बनाया गया एक फिल्म जिसमें जाकर के हेमा मालिनी, देवानंद और प्राण ने अपने कला से प्रदर्शन किया, क्राइम एक्शन फिल्म। जिसमें देवानंद और प्राण दो भाई जो बिछड़ जाते हैं, वो बाबुल प्यारे लता मंगेशकर जी की आवाज में ग्रेट सॉन्ग ऑफ द फिल्म जॉनी मेरा नाम 1970। सुनवाला मैं हूं संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं

है कि यदि प्लान आ काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अभी 25 और भी लेटर बचे हुए है, ट्राई करते रहना। सुनो वालो, और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे, और बॉलीवुड सॉन्ग्स में से निकाला गया जो अगला गीत हम अपने प्लेयर पे चुन करके रखे हुए हैं।

संगम फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश जी के आवाज में। फिल्म में एक्टिंग किया है राज कपूर और विजयंती माला ने।

साथ हो मेरी जा उदास, के झड़ोके में तुमको बिठाएंगे। और ये झड़ोके है क्या, यानी कि दिल से और वही खिड़की। और वहां बैठाकर फिल्म ब्रह्मचारी से निकाला गया, जिसमें काम किया है शमी कपूर।

जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है। जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। लिखने वाले भी क्या खूब लिखे हैं, कि दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है।

Sinny Gallagher, 1971 से. कहीं दर्द भरी गीत भी चला दिया जाता है और ये बात हम जाने कि गलती से हम वो ना कर बैठे जो और कर चुके हैं, क्योंकि बाद में ऐसा दर्द भरी गीतों को सुनने में और समझने में धीरे धीरे अलग सा और शौक हो जाता है. और कहीं आपको सॉरी बोलने भी पड़े तो उसमें पीछे हटना नहीं, क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं कि खोए हुए चीजें अक्सर खूबसूरत लगने लगती है जैसे

वो जीत कर आएंगे। फिल्म गैम्बलर से निकाला गया ये सुंदर सा गीत किशोर कुमार जी के आवाज में, एक फिल्म जिसमें देवानंद ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। और ये शब्द भी कितना गंभीरता होता है ना, कहा जाता है कि शब्द का भी तापमान होता है, कभी गर्म भी हो जाता है शब्दों, और ये सुकून भी देते हैं। जब ज्यादा गर्म भी हो जाए शब्दों ना, तो ये जला भी देते हैं। तो वही शब्द प्रयोग करो।

माइलो फिल्म से निकाला गया 1970, जिसमें शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिए।

करता जो वफा आप हमारे होते, दिल ने पुकारा फिल्म से निकाला गया 1967 से। और मुकेश जी की आवाज में हम सब इस गीत को सुने। और कहीं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स के साथ इस फिल्म में शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिया।

मत कहना कि संजय ने कहा था नहीं, क्योंकि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना जीवन में एक बात हमेशा याद रखना किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना।

विवाह जब कोई छोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ये सुंदर सा ब्रोकन हार्ट सॉन्ग जो निकाला गया फिल्म पूरब और पश्चिम से, जिसमें काम किए हैं इस फिल्म में मनोज कुमार और शायरा बानो ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। पूरब पश्चिम से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा कि जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग को खास होता है। जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग का खास होता है। दोस्तों सुनो लो, कभी कुछ गड़बड़ भी हो गया तो सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। क्योंकि जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग का खास होता है।

क्या खूब फरमाए हैं बॉलीवुड लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। मैं हूँ आपका सेवक संजय और कुछ ऐसा नया नया गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

दोस्तों कहा जाता है कि सुख चाहते हो तो रात में जगाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। बात के लिए मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ बॉलीवुड न्यू सॉन्ग्स के साथ

फिल्म साहिबा से निकाला गया। ये फिल्म जो 2025 का सॉन्ग्स में बिलोंग होता है और बॉलीवुड में जो हर साल में लगभग 2000 फिल्मों बनाया जाता है, जब देखा जाए कि 2017 में कहा जाता है कि इंडिया से सिनेमा 1986 स्पेलफिल्म्स जो बनाए थे वारफन het grootste aantal 364 in het Hindi was,

स्त्री टू से निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो बॉलीवुड 2025 के सॉन्ग लिस्ट में बिलोंग होते हैं।

इसे दोहरा दिया जाए। क्या खूब कहा गया है कि संबंध कभी जीत कर नहीं निभाए जा सकते, संबंधों के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है।

आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। दलजीत जो एक पंजाबी सिंगर

2024 में अपना कॉन्सर्ट एम्स्टर्डम डोम में भी दिया। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि आप अपना दिन इतना सुंदर बनाइए, इतना खुश रहो कि दुनिया वाले भी परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है।

2025 में रिलीज हुए ये फिल्म। सुनने वालों, हमारे देश में भी कुछ पुरानी फिल्मों जो चलाया जाता है गर्मी महीना में और बायोस्कोप में, तो कुछ फिल्मों के नाम अभी मैं आपके साथ जरूर जिक्र करेंगे बायोस्कोप में। और जैसे पुराने फिल्मों के नाम मैं जिक्र करता हूं, तो शोले, सिलसिला, इस प्रकार की फिल्मों, खास करके इस साल सूरीनाम में भी ऐसा कुछ किया जाए। तो अगर आपके मन में भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल देखने का इच्छा है, अगर आपके पास इंटरनेट है, तो जरूर गूगल महाराज पे और सर्च कीजिए कि इस साल कौन कौन सा फिल्म आपके लिए रखा जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा और प्रोग्राम को बनाया जाता है और इसी तरह से सूरीनाम में भी अगर आप वेकेशन से गए होंगे तो गर्मी महीना में हर साल की तरह इस साल भी कुछ कार्यक्रम को रखा जाएगा।

0: राज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: अरिजीत सिंह जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। एक फिल्म जो रिलीज हुआ 2025 में, विकी कौशिक जी ने अपना कला से अभिनय

सुनने वालों, ये भी एक गीत निकाला गया 2025 फिल्मों में से। समय के ओर जब देखा जाए कि किस ओर बॉलीवुड भी जा रहे हैं, और कहा जाता है कि 2024 में काफी बड़े बड़े फिल्मों निकले।

समय से सब कुछ मिलता है, समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत और दुख का कारण बनती है। एक और बॉलीवुड का प्लेलिस्ट 2025 के ओर हम बढ़ेंगे।

dansful faif se nikala gaya ye sundar sa geet. Comedy film jisme Akshay Kumar, Abhishek Bachchan, Ritesh Deshmukh, Fernandez, ढेर सारे फिल्म एक्टर्स इस फिल्म में अपना अभिनय दिए हैं. दोस्तों, शायद आपने कभी ये प्रश्न नहीं किए होंगे, पर यहाँ जब देखा जाए कि बॉलीवुड एक ऐसा बड़का फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें कहा गया है कि लगभग एक फिल्म में 4 गीतों के साथ मिनिमम रखा जाता है. और हम जब गिनती में देखें कि 500-600 फिल्म तो साल में बनी जाते हैं, उसे जब हम 4 से जोड़े तो लगभग 2400 गीतों का तैयारी हो जाता है साल भर में. और उसे हम जब आगे जोड़े लगभग 15 साल से तो 36,000 सॉन्ग्स हो जाते हैं.

गीत जो रिकॉर्ड किया गया 1902 में, एंड द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म अलम आरा 1931

शायद इस बात को भी आप जानते होंगे। उस समय के बाद जो हमारे समय आते थे, इन द यार 60, इन द यार 70, द यार 80 एंड 90, जिस समय कैसेट टेप्स के समय कहा जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो बस 2000 से शुरू हुआ। सही के बाद

सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। कोई कभी ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अपना हार मानने को नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा होने पे एक दूसरे से और बिखर जाते हैं। बस यही कि सॉरी कहना नहीं आता है। तो दोस्तों सुनो लो, इसमें कंजूसी ना करे। यहां तक था मैं आपका सेवक संजय। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स 2025 के लेकर, शायद हमारे समय का नहीं हो, पर हम इसी समय में जी रहे हैं। Wish you a very good day.

0: तेरे बिना भी क्या जीना है, ये सुंदर सा गीत निकाला गया फिल्म का नाम जो मुकद्दर का सिकंदर। ऐसा एक फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन ने और अपना कला से प्रदर्शन दिया, उसमें एक्ट्रेस राखी जो खेले है, और आज ये सुंदर सुंदर गीतों जो चल रहा है अमिताभ बच्चन का। तो शांता जी, आप एक्टरों में से अमिताभ बच्चन का फैन हो या कुछ उनके फिल्म जो देखते रहते हो आप या नहीं देखते रहते हो, क्या उसके बारे में आप क्या सुना सकते हो?
1: अमिताभ बच्चन जी, द बिग बी, ये एक्टरों में से भी एक मशहूर एक्टर है। और देखना कि कितना फर्क है ना, जब ये जवान था तो लंबू से कहते थे, और अब तो देखो कितना दिनार हो गया, 80 साल, लगभग 80 साल का हो गया है ना?
0: नहीं, 80 से ज्यादा हो गया,
1: 80 से ज्यादा।
0: और ये मुझे बड़ा गर्व की बात है कि एक ऐसा एक्टर है, कुछ साल पहले जो यहाँ हॉलैंड में एम्स्टर्डम में हुआ था आईफा अवार्ड
1: जी।
0: तो आईफा अवार्ड जब हुआ था शांता जी, तो हम एयरपोर्ट से और काम करते हैं थे, और उस समय हम लोगों वो आईफा अवार्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें जुड़े हुए थे, और कहते हैं कि बड़े बड़े बड़े ढेर सारे एक्टर्स आए ना आईफा में, कितने एक्टर को जो हम जानते ही भी नहीं थे, पर अमिताभ बच्चन एक ऐसा एक्टर है, कोई कहे दुनिया पे कि वो अमिताभ को नहीं जानते तो मुश्किल होगा।
1: पूरा दुनिया ना सिर्फ हिंदू और हिंदुस्तान में ये मशहूर है, बल्कि जैसा आप कहते हैं पूरा दुनिया में
0: ये मशहूर है। ऐसा एक एक्टर भी, जैसे अमेरिकन एक्टर, जैसे कोई कहे कि हम माइकल जैक्सन के नहीं जानते हैं, तो क्या उस पे आप क्या कह सकते हैं?
1: एक माइकल जैक्सन है और एक अमिताभ बच्चन है, एक शाहरुख खान जी है। और अमिताभ बच्चन को भी हमारा जो तौर के है ना, और कैसे पहले इथियोपी के मलय लोग जो है, वहाँ के लोग जो है, तुर्की के मोरक्कनर भी के मोरक्को, वो सब जानते हैं अमिताभ बच्चन जी को। और फिर अमिताभ बच्चन के खूबी ये है, इनसे हम भी सीख सकते हैं कि आज तक वो ऐसे कहीं बैठे ही नहीं है, वो बिजी रहते हैं। और अगर आप बिजी रहते ना, जब आप बैठ जाओगे तो दलित जीवन खत्म। और ऐसे जैसे अमिताभ बच्चन एक अच्छा सीख करते कि कुछ ना कुछ जरूर से जरूर करते रहो अपने जीवन में।
0: मीनाक्षी जी इस पे भी कुछ कहने वाले हैं?
2: बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी उनकी फिल्में देखी हैं और काफी सजीव व्यक्तित्व है और आवाज के धनी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अपने जीवन की सच्चाई को सामने प्रकट, सच्चाई को सच्चाई की तरह से प्रकट करते हैं, और फिल्मों में अभिनय उनका बहुत ही बढ़िया रहा है। कई फिल्में तो बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया है कई फिल्मों ने तो उनका, तो एक इंडिया के एक बेहतरीन अभिनय नेताओं में से एक हैं वो।
1: सबसे मशहूर फिल्म शोले।
0: हाँ, पर चलो शोले जो 2025 में फिर से दोबारा रिलीज किया गया ना, 2025 की 26 में उसे फिर से उसे 26 में मैं उसे फिर से जो बनाया गया उसमें फिर और म्यूजिक और रंग आदि, यानी कि फिर का फिल्म बनाया गया। शांता जी आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे, बबली जी आप क्या कहने चाहते हैं?
3: मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन, उनको
0: ऐसा ये नाम कैसे पड़ा?
3: क्योंकि वो ज़्यादातर उस टाइम पे थोड़ी लड़ाई वाली फिल्में बनते थे और पारिवारिक भी बनती थी, तो वो थोड़ी लड़ाई करते थे, इसलिए उनको पता नहीं, मैं भी नहीं जानती पूरा तो कि कैसे उनका नाम एंग्री यंग मैन पड़ा। और जब शुरू में शांता जी, मीनाक्षी जी वो फिल्मों में आना चाहते थे तो डायरेक्टर कहते तुम एक्टर नहीं बन सकते, इतनी लंबी टांगे, पतले थे, तो कहते ना। तो वही देखो बाद में जो उनको मना करते थे वो भी उनको अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं। ऐसे ही होता है ना, कहते चढ़ते सूरज को सलाम है। जब इंसान मशहूर हो जाए तो हर कोई उनकी वाह वाह करता है।
0: उनके समय पे देखो कुछ एक्टर्स जो जैसे अमजद खान, एक बहुत बेहतरीन एक्टर जो एंट्री लिए थे शोले फिल्म से ना, और काफ़ी फिल्म उनके साथ उन्होंने खेले है और बनाए हैं। देखा जाए कि एक एक उसमें से एक फिल्म जो निकाला जाए किशोर कुमार के आवाज़ में, मैं सुनाना चाहता हूँ।

0: सुनने वालों, अभी आपने सुना फिल्म कालिया से निकाला गया ये गीत, जो अमिताभ बच्चन और अमजद खान ने उसमें अपना कला से प्रदर्शन दिए। प्राण भी थे उसमें, कालिया में अमजद खान थे, प्राण भी थे ना, उसमें ऑफिसर हुए हैं। और भी अभी एक दो गीत चलाएंगे अमिताभ बच्चन के फिल्मों के बारे में। और क्या और सुनाने वाले हैं बबली जी आप?
1: और इस फिल्म का डायलॉग था, कल्लू से कालिया बन गया,
0: कल्लू से कालिया बन गया।
1: इसका नाम कल्लू होता है, तो जब भी वो बड़ा बन जाता है तो कालिया बन जाता है।
0: अब देखो राइटर लोग कितना अच्छा अच्छा संदेश रख देते हैं कि कल्लू जो प्यार से अपने बेटा का कोई कल्लू पुकारते हैं, वो फिर बाद में जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा यानी कि अपना कला से प्रदर्शन में जो एक कैसे कहते हैं कि इसमें ये कालिया फिल्म किसके बारे में जा है, वो जमीन का, जमीन में से वो तो कोयला है ना, काला पत्थर है
1: ना, ये तो फिल्म थी उसके ऊपर। अरे वैसे चोरी चकारी
0: के अंतर्गत था। और यही कल्लू जो कुत्ते भोकते थे तो डर के मारा भागते थे और बाद में ये कालिया बन जाता है।
1: और मिस्टर नटवाला में भी पहले नाम नट्टू होता है तो फिर मिस्टर नटवाला।
0: हाँ बिल्कुल, नट्टू से नटवालाल हो जाता है। चलो एक और भी मुकद्दर का सिकंदर का निकाला हुआ गीत, जो अमिताभ बच्चन और रेखा जो इस फिल्म में काम किए हैं चलाते हैं।

0: जिंदगी हर कदम जीत जाएंगे हम
1: तुम अगर संग है जिंदगी।
0: यहां तक था हम सबका जो आज का कार्यक्रम। आशा ये रखता हूं कि आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। कुछ हिल मिले गीतों के साथ कार्यक्रम में हम सब आपके साथ जुड़े रहे। नमस्कार।

मित्रों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मित्रों मन की शांति भंग हो जाती है। आप रिश्ता नहीं रह पाते हो, हमेशा टेंशन में आप रहते हो। भाई बहनों, हमेशा टेंशन में तो व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जब आप अशांत रहते हो तो घर में परिवार के साथ चाहे जहां भी हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो या गुस्सा कर लेते हो। मित्रों, तो ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ते रहो।

दोस्तों, तन की सुंदरता ध्यान करना, तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मित्रों, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव यानी मनुष्य का आदत स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए।

मित्रों, कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे मित्रों, उतना ही खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे जिंदगी में। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। आप खुद जानते हो मित्रों, आप इसमें गलत फहमी ना लावे कि हम नहीं जानते, हम ना जानत रहेली। खबरदार, सब चीज तो जाने हैं, फिर भी ताल मटोल कर रहे हैं। अपने कर्म को सुधारो मित्रों, कर्म को सुधारो, यही सबसे बड़ी बात है मित्रों, कर्म को सुधारना चाहिए।

मित्रों, भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मित्रों, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मित्रों, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है, संत के समान है। मित्रों, ऐसा मनुष्य स्थिर चित और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

साथियों, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिसमें भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश होने पर भी वो अपने स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। मित्रों, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी या भक्त की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। मित्रों, अचल होती है, डगमग नहीं होवत है। जैसे आप अपने जीवन में ऐसे नहीं है, आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भक्ति करते रहना। मित्रों, भक्ति करते रहना।

प्रेमी भाई बहनों, बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में यानी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मित्रों, स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, वाह वाह क्या बात है रे, क्या बात है। मित्रों, तो आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे लोग रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे मित्रों, तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे चापलूसी लोगों से बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत चौकस रहना चाहिए। मित्रों, एक भगत सांवरिया के पास बैठकर क्या सुनाता है।

मित्रों, कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हैं ना, या करते हैं पता नहीं, आप खुद जानो। मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं, तो गधे को घोड़ा आप नहीं बनाते हैं ना। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है मित्रों, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप भी ऐसे हैं, खबरदार। मगर मुझे पता है आप ऐसे नहीं हैं, जानता हूं मैं। भगवान कहते हैं मित्रों, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना। विशेष करके लड़की लड़कियों जवान है ना, मीठी मीठी बातों में फंसा लेंगे, जीवन खराब कर देंगे, खबरदार पास हो गए। तो मीठी मीठी बातों में कभी मत फंसना मित्रों, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते

वही लोग आपको ज्यादा चोट पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा। मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहां कहां ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूँ कि इस भजन को सुनिए। अगर आप इसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो।

साथियों, मैं इस भजन के माध्यम से उन लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूँ जो इस भजन में बतलाए हुए श्रेणी में

आकाशवाणी रेडियो फार्मन के सुनने वालों, प्रिय भक्त जनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। इस खूबसूरत दिवस में स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम आदा।

कभी जाता नहीं। यह से पेश करेंगे स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम। आप सभी को शुभ प्रभात कहते हुए आरंभ करने को जा रही हूँ। Den Haag Leisken Veen, Leisken Veen voor Parkse, Zondag Groothandel, Zondag Groothandel in Groente en Fruit. Jankari Kelie Aap Jeroerse, Sriman Parshuram Mohanlaase Talukat Kijiga, 06-22-79-58-62 per. Yes, Sundarsa Bhajan, Bhajan, Yaniki, Hanuman Chalisa ke saath yahan se aa

सब सुखलए तुम्हारे शरण, तुम रक्षक काहो को डरना। हनुमान चालीसा के साथ यहाँ पे स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आरंभ किया गया है और वो भी देन हाग लेस्कन फिल्म फोर पार्क से सुंदर ग्रोथ हैंडल ए ग्रोंते एंड फ्रूट। इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी। Daarna Gleiskeveen Voorpark ze bouw- en onderhoudsbedrijf. Bouw- en onderhoudsbedrijf in Kamalik Johe, Sriman Haridat Rohit Devnarain. Sriman Haridat Rohit Devnarain ke taraf se aapke liye.

मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या भला क्या गलत है, मुझे नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, बस तुम है तो मैं हूँ, तू नहीं तो मैं भी नहीं। पेश किया गया है दनाखलाइस कफे फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बदरेव जो श्रीमान, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण जी। दनाखलाइस कफे फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा, आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोत हांडल पे फे पेश करते हैं यहां से आपके लिए दुर्गा चालीसा।

सुंदर सा चालीसा यहाँ से हम सबने सुने हैं। आरा बहुत दूर अभी जाना है, बहुत दूर अभी जाना है, पर चिंता नहीं चिंतन का दामन थामा है, क्योंकि माँ ने मेरी मुझे अपना माना है। जय माता दी। पेश किया गया है देनाख लेस कफेन फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा ए खुरुधांदल पेफे। देनाख से खमें तरासलेत श्रीमती लेना बाबू राम जी की तरफ से हम सुनेंगे स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम से और फाहोन रेडियो के जरिए से आपके लिए।

महादेव की भक्ति में बसी है अनमोल शक्ति। सुंदर सा भजन पेश किया गया है देन हाँ से खमेंतर रात्सलेत श्रीमती लन बाबू राम जी की तरफ से। आपको लेकर चलते एक बार फिर देन हाँ, देन हाँ से श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से। हम यहाँ से जरूर से

वहाँ रेडियो के जरिए से आपने सुने सुंदर सा गणेश भजन, यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। आज हर घर में बप्पा का वास है, आज हर घर में बप्पा का वास है, तभी तो यह दिन इतना ही खास है। पेश किया गया है दनाख से, दनाख के रहने वाले श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से शुभ दिवस हम सभी को कह रहे हैं। श्री नाम अलिफोनो मैन का नाम भूख इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर इस खूबसूरत दिवस इस ठंडी ठंडी भजन माला कार्यक्रम में शुभ प्रभात कहते हुए

सेवा करूंगी गुणगान करके। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्व अर्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री नाम फोन मैन का नाम हो इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर। श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से भजन माला कार्यक्रम में शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कह रहे हैं। दनहाक मकाई सरात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन फाहोन हिंदू बास स्कूल फरे नखे अलखमेन हिंदू अंडरवेस नीदरलैंड की तरफ से।

अति सुंदर अति सुंदर सरस्वती माँ का सुंदर सा भजन यहाँ से आपके लिए पेश किया गया है। धनात्मा का इस रत्न मच्छे से हिंदू बास स्कूल फाहोन फरेनिंग अल्खमेन हिंदू ऑनरवेस नीदरलैंड के तरफ से ये सुंदर सा सरस्वती माता भजन पेश किया गया है आप ही का फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। धनाखे इकने तो स्त्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देश में श्रद्धा भक्ति के साथ

अवश्य सुरेश कर के आवाज में सुंदर सा गणेश भजन, यहाँ से गणेश वंदना, गणेश मंत्र आपके लिए पेश किया गया है। दिनाखे इकनुत अस्त्रात नमर दस से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चानगुर बिन के निर्देशों में श्रद्धा भक्ति के साथ पेश किया गया है। रोटरडैम होक फ्लिट टेक्सास वेख नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मकरस्त्रात सेसनफेर तक से श्री सरस्वती भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी की तरफ से सुप्रभात कहते हुए सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणी

रोटरडाम होकफ्लिट टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर, श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ, श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्केटस्ट्रैट 74 से श्री माता श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी की तरफ से शुभ प्रभात और एक मंगलमय दिवस कह रहा है। मेरे प्यारे सुनने वालों, फाहर रेडियो की डायरेक्टरी स्टाफ पर्सनल और सभी फ्रेमवेयर खर्च की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते पेश है।

सभी फ्रेवेला खर्च की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते पेश किया गया है। देने सुनने के लिए हम आपको हार्दिक से धन्यवाद दे रहे हैं।

करो और प्यार करो। सुंदर सा गीत यहाँ आपके सेवा में जो नशर किया गया है आज इस सुबह के कार्यक्रम में सुनने वालों, यहाँ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ पेश किया जाता है।

अति सुंदर अति सुंदर। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, भगवान हमेशा आपके

भजन में भी आपने सुने कैसे बदलाव आए संगीत में। उम्मीद मत छोड़ो मेरे दोस्त, उम्मीद मत छोड़ो। जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी तभी भगवान

जो स्वयं ही जो स्वयं की सहायता करते हैं, अर्थात जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो निरंतर प्रयास करते रहते

हमेशा सहायता देते हैं। खुद हेल्प आले इन द खेन दिस एक सेल्फ हेल्प खुद हेल्प आले इन द खेन दिस एक सेल्फ हेल्पन दैट विल सेगन दखेनन दी फोरड्यूरेंड ब्लाइवन प्रोबेरन एंड नीट इन वन होप अपगेवन।

0: एक मिनट बाकी है 8 बजने में, 1 मिनट बाकी है 8 बजने में, बुधवार के सुबह की कार्यक्रम यहाँ से प्रस्तुत किया जाता है मेरे दोस्त। और यहाँ से विज्ञापन लगा देती हूँ, विज्ञापन के बाद आपसे जरूर से मिलेंगे।
1: हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर

0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 0736523747 of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 0736523747.
3: जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सुने, अगर आपको जरूरी है समाचार दिलाने के लिए तो जरूर से आप तालुकात कीजिएगा 0736523747 पर। एक बार फिर आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है। 8:05 गुजर गया है और आज 8 तारीख है, 7वां महीना चल रहा है 2020 का। ये आशा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में

Kabus Leji. और इस गीत पे एक की है रजेश खन्ना और हेलन जी। फिल्म का नाम द ट्रेन 1987 तक में पिक्चराइज किया गया है। गीत का बोल आप जरूर सुनते रहना।

देश फिल्म का नाम है। इस बार आपको लेकर चलते हैं फिल्म शोले की तरफ। फिल्म शोले आप तो आपको जानते हैं, अब तो पता है ना। आर डी बर्मन हिमसेल्फ उन्हीं की आवाज में म्यूजिक ये खुद दिया है।

हाँ, तार का नंबर तो आपने सुने हैं विज्ञापन में, यहाँ से एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9753 65 2247.

प्यारे सुनने वालों, 9:03 गुजर गया, इंतजार जिनका था वो भी हाजिर हो गया है। तो यहाँ से हम बहुत प्यार के साथ, आदर सम्मान के साथ श्री पंडित राजकुमार महातम जी को स्वागत कहती हूँ। पंडित जी, आप आकाश में हो?

समारोपित वाम भागम पाडु महासाई के चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वाहा च मुक्षुक स्वरूप विसरु को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। और ईश्वर को अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बार बार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जाकर यथायोग मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके राजू फान को जो मालिक हैं मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ।

अनेकों बार सुने के जी चाहे तभी सोच तभी जान लिए तभी आपका अनुभव होगा कि आप भक्ति को जा रहे। फिर से बात दोहरा रहा हूँ, एक ही गाथा बार बार आपके सुनने की इच्छा हो तो मान लिया जाए, अनुभव करो कि आप भक्ति को जा रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछले बुधवार को सबरी माँ बारे में कुछ कहे थे, वही गाथा लेके आपके भी प्रस्तुत में हूँ आपके सुनाने के लिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कौन? राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु ने विचार किया कि इन ऋषियों ने सबरी का अपमान किया है। ये ऋषि ज्ञानी है, तपस्वी है, साधु है, परंतु अभिमानी है। तपश्चर्या ठीक है, परंतु तप का अभिमान पतन करने वाला है। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पाप करता है, पतन करता है। शब्द ज्ञानी जल्दी नमन नहीं करता, उसके हृदय में ठसक होती है कि मैं ज्ञानी हूँ, चलो बखान करते हैं। इसलिए गुरु को लगन लगाने के कि मैं ब्रह्म रूप हो गया हूँ, मैं ब्रह्म रूप हो गया हूँ। कितने लोग जा अगर कुछ पढ़ ले हैं तो अपने आप के ज्ञान खेलते मैंने बहुत कुछ जाना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आकाशवाणी के सुना लो, बहुत से लोगों के द्वारा सम्मान देने के कारण मनुष्य भान भूल जाता है। इसके उपरांत सेवा सुमरण में उपेक्ष जग जाती है, इस पर ध्यान करना। और अभिमान किसी की झुकने नहीं देता, झुकने नहीं देता। जहाँ विनय होती है वही सुमरण सद्गुण आते हैं, जहाँ अभिमान होता है वही समस्त दुर्गन आते हैं। अभिमान पतन करता है। जब तक अहमता ममता होती है तब तक ज्ञान नहीं पछता। ज्ञानी को विघन करने वाले अभिमान है। अभिमान के मूल में क्रोध है, तप में विघन करने वाले क्रोध है।

भगवान उससे कहते हैं कि मैं तेरा दादा हूँ, मैं तेरा दादा लगता हूँ। तुझे यदि मेरी परवाह नहीं है तो मुझे तेरी क्यों परवाह है। इस पे ध्यान करना आकाशवाणी के चले, जो अहम ममता ना छोड़ तब तक भगवान मिलते नहीं। जीव में पन अर्थात अभिमान ना छोड़ तब तक उसे भागवत दर्शन नहीं होते। जब तक अहंकार है तब तक भगवान आते नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ हरि नहीं है, और जहाँ हरि है वहाँ अहंकार नहीं। राम जी ने विचार किया कि मुझे किसी के आश्रय में जाना नहीं। राम जी ऋषियों से पूछने लगे कि सबरी कहाँ है। जिस दिन प्रभु पधारे उस दिन सबरी घर में ही थी। श्री राम जप करते हुए बैठी थी। सबरी जी को आशा नहीं थी कि श्री राम उसके यहाँ पधारेंगे। सबरी के ऐसी लगता था कि आज तक मैंने बहुत प्रतीक्षा की, परंतु वे आया नहीं। मैंने सुना है कि वे इस ओर पधारे हैं, उनके तो ऋषि अपने आश्रम मिले गए होंगे। श्री राम मेरे यहाँ नहीं आएंगे।

भोज करते हैं, उनके घर आते हैं। 12 वर्ष तक करें उसको अवश्य ही सिद्ध मिलती है। परमात्मा ने सबरी के चरित्र से ज्ञान दिया है कि समस्त जीवन जो मुझको खोजता है उसे एक दिन मैं खोजने निकलता हूँ, मिलता है मुझको सदैव खोजते रहे जो मुझे सब

हसनापुर जाते हैं। कौन? उदृषराज उनको अपने राजमहल में पधारने के लिए निमंत्रण देते। किन्हें? कृष्ण भगवान को 56 प्रकार के भोजन सामग्री तैयार कराई जाती हैं, परंतु भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विचारते हैं, ये जीव लायक नहीं हुआ, इसके हृदय कुटिल हैं, मुझे इसके घर जाना नहीं है। सभा में बड़े बड़े राजा विराजे हुए थे। राजाओं को आशा थी कि श्री कृष्ण हमारे यहाँ आएगी। भगवान ने राजाओं को निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य ने कहा, सबको अस्वीकार करते हैं तो क्या आज भोजन नहीं करना है? भोजन का समय हो गया है, कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा। दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपत्ति हो तो मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारेंगे। भगवान विचारते हैं।

अभिमान भाव तुद्वान हो जाए तो ज्ञान अभिमान उसे मारता है, और अपर रह जाए तो अज्ञान मारता है। मुझे किसी ब्राह्मण के यहाँ जा

हमारे एक भक्त यहाँ मुझे जाना है। वो भक्त कौन है आप जानते हैं? भगवान सारथी को आज्ञा की कि विधुर जी के झोपड़ी की ओर रथ ले चलो। भगवान का निश्चय किया हुआ था कि मेरे विधुर बहुत समय से मेरे प्रतीक्षा कर रहा है, आज मैं वहां जाऊंगा। इस ओर विधुर जी विचारते थे कि अभी मैं इस योग नहीं हूँ, इसलिए भगवान मेरे घर नहीं आते। झोपड़ी का द्वार बंद कर करके विधुर जी और उनकी पत्नी भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उनको खबर नहीं थी कि जिनके वे कीर्तन कर रहे हैं वे ही आज उनके द्वार पर आकर खड़े हैं। मनुष्य का इस पे ध्यान करना आकाशवाणी के सुना लो, मनुष्य का जीवन पवित्र बनेगा तो भगवान बिना निमंत्रण उनके घर आएंगे। आज सबरी के आश्रम में श्री लक्ष्मण पधारे हैं, श्री राम लक्ष्मण पधारे हैं। सबरी भी अतिशय आनंद हुआ। जगत के मालिक अनंत

प्रभु ने वल्क धारण किए हैं, माथे पर सुंदर जटा मुकुट है, शिर अंग मेघ के समान श्याम और लक्ष्मण गोरे हैं। सरसी जो लोचन, इस पे ध्यान करना, सरसी जो लोचन बहु विशाला, जटा मुकुट सिर वरमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी करी चरण लपटाई, प्रेम मगना प्रेम मगन मुख वचन नाया, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल से चरण पखारी, पुनि सुंदर आसन बैठारी। सबरी ने दर्भ के दो आसन दिया, उन आसनों पर श्री राम लक्ष्मण विराजे, श्री राम लक्ष्मण के दिव्य प्रेम को देख करके सबरी दर्शन में इनके तन्मय हो गया कि उनके आंखों आंसू से भर गईं। परमात्मा के दर्शन करते करते आंखों में आंसू आवे और प्रभु के स्वरूप भी बराबर ना देखे, उस दिन ही बराबर दर्शन होते हैं। दर्शन करते हुए आंखों में आंसू ना आवे तब तक बराबर दर्शन होते ही नहीं। सेवा करते समय हृदय पिघले और आंखों में से आंसू निकले तो मानना कि सेवा की। सभी राम जी के सन्मुख विराजे हुए हैं, परंतु आंख आंसू से भर जाने के कारण वो बारंबार दर्शन नहीं कर सकती थी। परमात्मा आज मेरे घर पधारे और मैं हीन जाति की एक भलनी, मेरे घर भगवान पधारे, मेरे भगवान कैसे उदार हैं, इनका मैं कैसे स्वागत करूं, इनके मैं क्या अर्पण करूं। आकाशवाणी के सुनने वाले, आने वाले बुधवार को मैं गाथा आगे आपके बीच प्रस्तुत करूंगा कि सबरी माँ क्या अर्पण करेगा। युवाने द्वारा अपना परिचय विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्।

अलग है। ये लाइन भी आप सुने, इसे आप भी खुश हो जाएंगे कि दिल में रह कर, कि दिल में रह कर दिल पर वार करते हो, दिल में रह कर दिल को पर वार करते हो, जानते हो कि उसमें तुम्हारा ही बसेरा है, कि दिल में तुम्हारा ही बसेरा है, फिर क्यों अपने घर को वीरान करते हो, क्यों।

होने से पहले, जो हमारे बस में नहीं है, बेकाबू है मोहब्बत। अगर कोई गिला शिकवा हो ना, तो बैठ कर सुझा लेना, बाद में मौका मिले या ना मिले, बस दिल पे ना लगा लेना, दिल पे ना लगा लेना।

24:30 हो चला है, 24:30 हो चला है आज के प्रोग्राम में। यहाँ से आपके लिए चुन कर रखी हूँ और आपको लेकर चलते हैं आशा भोसले जी की आवाज़ में रातों का राजा फिल्म से निकालेंगे।

म्यूजिक आप सुन रहे हैं। लाजवाब है, लाजवाब है। फिल्म का नाम दो उस्ताद, मेरे दोस्त। फिल्म का नाम दो उस्ताद, रफ़ी जी के आवाज़ में सुने हम। और ये फिल्म दो उस्ताद 1995 तक में रिलीज़ किया गया है।

अहमद रुश्दी की आवाज़ में नाता प्यार का प्यार से जोड़िए जी। जो ये कहते हैं कि मोहब्बत है, क्या खुद पर कभी तरस आता है? और जो कहते हैं बात बात पर मरने की बात।

तमन्ना दे के आवाज में कि आओ ट्विस्ट करे। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए पेश होगा हो रहा है।

ऐ दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सुना दी हमको नजीम और उमर वागित हुसैन। चलते हैं सुनते हैं इस बार फिर है उमर वागित हुसैन की आवाज़ में।

फ्रेंड जो है, दोस्ती जो है, सहेली जो है, यहाँ पर तो आप अपने आप रह सकते हो। मजाक जो है, दिल के बात जो है, तो एक दूसरे से कर सकते हो। और दोस्ती ऐसा होना चाहिए कि ना कि जब दोस्ती ना है तो आपके बात वहाँ शहर में घूमे, ना ना ना, तो वो दोस्ती नहीं। दोस्ती जो आपके बात जो है, जो आप बात करते हैं, अपना दिल के बात करते हैं, वो वहीं तक सीमित रहे। As the sun niet wil schijnen, dan schijn je toch lekker zelf. So simple is that.

बिक जाएंगे, बिक जाएगा माटी के मोल। बस अच्छे अच्छे यादगार जो है वो रह जाएगा, बुरा जो करोगे तो वो भी रह जाएगा।

एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। और खास बात ये है, ये म्यूजिक जो आपने सुने ये गीत में, ये म्यूजिक दिया है ज्वाला जी। कितना अच्छा बात है ना।

फिल्म नीलकमल नीलकमल रफी जी के गाया हुआ गीत कवर किया गया है निजाम वागिद हुसैन। निजाम वागिद हुसैन की आवाज में द पेंट एक्सक्लूसिव फॉर्मेट सी।

ने ऊंच नीच कला न जाने जात सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अनाप सत श्री अकाल जी। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। इस चून से आपको पता चल चुका होगा कि हम आ गए हैं अपना देश और विदेश की समाचार लेकर।

दोस्तों हम तुरंत चाहते हैं अपना सूरीनाम की ओर। भैया आप लोग को पता है अब पाकिस्तान में या कहीं कोई और देश में या कोई फेस्ट रहे भाई, तो आपने जरूर यूट्यूब पे देखा होगा कि सबन बंदूक लेके लॉसेस खुद दागे हैं। हाँ, फॉर द फेस एंड दैट इज फॉर प्लसीर दून से मैं से, तो उस सबके पास बंदूक रहे तो लॉसेस खुद दागे और फेस तो हुए और नाचे है दत है बवे अंता लंद इस दत वेल मुख लगमा इन सूरीनाम इस दत नीद मैं से नहीं दार इस स्ट्रेंग फरबोद। तो ऐसे भैया एगो फेस रहा ब्रॉन्स वैख ब्रोको पोंदो में और फेस वाला क्रूतु ओसो कोनो क्रूतु ओसो भैया लगे हुआ पे फेस बे क्रूतु ओसो तो हुआ करो जगह के नाम है क्रूतु ओसो हुआ फेस रहा। और ये बात हुए हैगा कि फेस में भैया रात के आदमी दागी से पिस्तौल स्टूल और उसको दागी से भाए, तो यहाँ पे बताए गए हैगा एक बारे में सबन अनखिफ्त कर इसे सिपाही आए के पहुँचे ले ब्रॉन्स वेख के और जब गए ले वहाँ तेको द्रियन ट्विन तक यारख एक आदमी के पकड़ी से जेकर पास पिस्तौल रहा। हाँ, और बोले है ओफ थ्री डी कलर ऑफ फ्यूर वेथ से और बताए गए सिपाही एक पकड़ी से गया और एक लगे पिस्तौल मिलल है लाइओ ही मिलल है एक पास एगो करिया ओतो फोर्थ रेप्टर रहा जो रेस्टिंग क्लास क्रीक में उजात रहा बस वह खरीद चल गया हुआ। और बोले है ओकर बारे में डायरेक्ट सिपाही कंट्रोल कैसे क्लास क्रीक में और फोर्थ रेप्टर वास कंट्रोल पोस्ट अने स्टैंडर्ड हाउ द हुआ पे सेवन कंट्रोल पोस्ट पे के रोकी से और सिर्फ येर करी से कर पास इतना वापन पाई से। और बोले है जब इन से इतने वेद फॉर फोकस ओवर खतरा कर नतीलक में से और ये रमिया का बोले बोले हम अपन पिस्तौल वा धल्ले रहली अने आस बोरख कहीं पे यहाँ तय इस ऑनर फॉर क्लार द दैट इट आन खतरों फन फिर वापन फन हेमवास ओकर बा और फॉर क्लार करेगा कि आस अंदर पांथ मुके धल्ले रही तय इस अन खोकन ते अबराब रुकी में खोक होत रात ओके अंदर पांथ हम धल्ले रही के हम जीत अपने पिस्तौल वा पाया अब ले द फरदाख्त बकेंद दन आज दत है तय इस अर्फीस स्कोटन इन लुस हाथ खलोस नादन इन फीस गांगर हम दत सो हेबन गफरा। De politie van de Bronswerk zet een onderzoek voor, maar hier na liekel he, kiu illegale raha, kiu legale pistool lab hai, lekin hua na soma Suriname me, jese Middellandse Oosten me, Pakistan, or kahin kahin die stu me, se van je face kere he, dan doen ze dat mensen, haan, aise he. अब देखो भैया सूरीनाम के सिपाही जो है ना सबके बोलेला बड़ा स्लेक्ट रिपोर्टाज है उस सब कहेगा उस सबके भैया बड़ी बड़ी सिपाही के पकड़ा है। अब देखिए यहाँ फिन तीन सिपाही पकड़ा ने भैया हाँ स्कोतू भाई स्कोतू आदमी लोग के पेस्तक कर ले रहा जाने तो कि हमें इतना पैसा दे तो सखुआ हम दाब देवे तो सखुआ हम दाब दे चुकू ले भैया पैसा लेवे हैगा। तो यहाँ पे बोले हैगा तीन सिपाही के सबन पकड़ी हैगा फॉर अफ पेरसिंग ये बातचीत हुए हैगा एगो है पुलिसिया खेन इस्ट क्लास से कि दूसरा एगो ब्रिगाडियर है और दर्द एगो अस्पिरान सिपाही श्री नाम देश के है। और बोले हैगा स्ट्रफ रखलक अंडरसुक पहले ना अन आँख नहीं फटे फन ऑटोमोबाइल्स एगो अन गाड़ी चला आदमी गली सबके ऊपर नालिश करी से तब ले द स्वार सस्ता बतरेफ के उसको तो इस क्लास के राव ब्रिगाडियर रहा 6 जुलाई के एक के पकड़ी से फॉर अफ पेरसिंग तो अफ पेरसिंग के पकड़ी से हुई पकड़ी से दोस्तों। तो यहाँ बतावे गए हैगा कि अन बताए गए है उद्योग अनमिया के पेस्ट करी से तुई पुलिसिया दी इन एन बसित वास वा इलिखाल फेस फिर वा उकर पास को इलिखाल पिस्तौल है जेन आनखेफ्तो करी से आ इस कोतुन उकर लगे इलिखाल पिस्तौल वा पकड़ ले से ले ले से और ओके बोली से जे तू हमें तुई एन हाल्फ दोईशन अमेरिकान डॉलर दी है तब बोले तो सखवा हम दाब दे बोले कुछ ना हो अब ये रमिया के पैसे ना रहा तुई एन हाल्फ दोईशन तो ओके ना भरी से तो इस पिस्तौल वा ले ले से भैया सौदन अखेन फोकस आनखेफ
$2,500 ऐश करी से द मान हद दखल नित में से उ जोन के पास पिस्तौल वार हाँ फिर वह परमा से वहाँ बसलाक कली से गा स्कोटोर और स्कोटोर पिस्तौल वन दोरो फिर से बेच दी से भाई फरमूदन दाते बसलाक नूमो वापस लातर इस दोर फरकोह द मान दे दारो आनखिफ्त करी इस पुलिसी विरोल में अपि तीनों के पकड़ के बंद करी से गा ओपीसेट उपमारा मिनिस्टर beslist over de verder verloop van de zaken te scootelen bij jou. Als hij te openlijk tjoekoemangen ke to etra paisa deed hem te zakwaad daap de bij. Ab deko ego admi bij jou, ego oud sipahik pakkeri se 27-jarige aspirant agent ke servier kari se go auto chauffeur automobilist ke bole hemme 400 SRD de. Ta kuch na bata iske kunchi bhai laam baki eke bhi 400 bhari se automobilist toa. Baki Ramia bole na बोले तो हम जब आंखिफ्ते करे तो कि जाए के आंखिफ्ते करी से और एक भी सीफ ने तुम देख यार के स्कोटू के पकड़ ली से तो जोन आदमी जोन सिपाही तो और कमरात है भैया जिके सोचिए हम का बोले हैं हम विश्वास करीला हमें फैला खैर करी वही तो के इसे भी चीज करी तो सिपाही पे कैसे विश्वास करी भैया हम ना बोले ला मौसी लो उनकी सब स्कोतू है माँ शायद बहुत ढेर हुई गए सूरीनाम दी इसमें सिपाही लोन भाई जोन ये चीज करे अब देख एक आदमी का और बात है आज एगो गाड़ी जा है भैया और ब्रोफिस पे दुई मिला जा है तो दुई मिला ब्रोफिस पे बैठल उतुआ वाला अनमिया रुकल है और शुक्रवार के शुक्रवार सुफ्राइडा फिरन ट्वेंटी यार के वो रिसेंटली दी दी शुक्रवार के ब्रोफिस पे दुई मिला जा है और फोर वेरबेड 21 यार के को आदमी के नाम बा ब्रिंसले लियोनार मर गए भैया 5 तारीख के उके लाठी से मारी से भैया और फरकेर में हैली से 7 तारीख फिर यूलवेटन दथे से 100 आनमेलन तो आप एक स्कोटू खोजे है जो अनमिया लाठी से तो हुआ मचे निकल के मारी ब्रोफिस वाके तो इस स्कोटू से बोले है बोले कि हम अब्बे ना आबे बोले हम जाएला पहले अपरे के वासी करवाबे तब आबे तो के मेल द करबे तो एक के कोई ई सिपाही बोले ना बोले हम तो के ना गौरव के कब तू वासी हुई है तब तू हमार लगी है बोले हम लोग आयला तो के लेवे तो एक के गेल खोजे तो एक के ना पाई से भैया ते बिहान भर अपन अफोकात लेके और जाए के मेल द करी से गा द फरदख्त वेर द अख्त नीत अनकोट्रोफन और बोले है गा अनफोकान के लेके बिहान भर गेले वेल तो मेल द करी से गा और बोले है बाय द फोरलेगिंग हियर द फरदख्त टूगेगिवन दैट हे द ब्रोफिसर en die andere persoon met de voorwerp slagen heeft toegebracht aan de Johannes Moerastraat. Toen verkeer me bij jezelf laatje aan die leek bij jullie heen. En verkeer me bij te kus bolen op je bij jou. Nee. ऐसन तैसन अनमी लाठी लेके आयो मारी बस मर जइयो भाई और तू जाने हैगा फरकीर में भी कितना गड़बड़ है देखो दुई प्राणी क्यूबा के लड़ी से दोनों प्राणी भैया घर में वो लड़ाई भइल है इसल खवेल के कि औरतियां निकार के कुछ चोक चीज से अनमिया के भोग दई से अनमिया के जाई के परल अकादमी सिकन है इसमें सिपाही जाई के पहुंचल है तो उस सोचे ऊपर फाल भइल हमदा तू जाने सरनामे बड़ी जोर ऊपर फाल होवे है अबे बता और तो सोचे ऊपर फाल भइल है तो जाए के पहुँचो में ब्लैक भइल हैगा कि औरतिया रमिया में झगड़ा भइल है तो औरतिया ओके भोग ली से औरतिया को तौलक ली से गा किसको उतों से बतियाई सिकेला हम तो क्यूबान रहा खैर फ्लैट की सिपाही पहुँचल है तो अनमिया का बोले है अनमिया बोले हम सखुआ बोले त्रक त्रक करेला बोले हम अपन पार्टनर के

Terwijl de discussie zich nu vooral richt op onderzoek van deze ene vissterfte, dreigt een veel grotere werkelijkheid buiten beeld te raken. Barisen ze willen onderdrukbaar. Alleen Sarmaka rivier mee, Marowijn rivier, Lava Tapanahoni, Kapaname mee. Waterwegen worden al jarenlang beïnvloed door intensieve goudwinning, Sonajon Kona hai, Jungle Kata hai. Sap hem luke deske barbaat hoe bhaiya. Kwik se, Sona se. Obele de goudkoorts lever zeker inkomsten op. Sonoa mile inkomsten awe hebben ke bodem, jon ernstig hem luke vervuil hoe hai. Goud kabele, bestaat niet alleen uit bomen, ook de bodem leeft. Wanneer die jarenlang wordt open gegraven en vervuild, raakt uiteindelijk hele ecosysteem aangezaagd. Water, vissen, dieren, uiteindelijk ook de mensen. To itera, ze hebben zo'n gaat in paisa gaat hem loke, milieu vervuil hoe we waardoor itera machiri, pani, machiri ze mare he, oro, bataye gaye he. बताए गए हैं कि हम लोग के जंगल जोन हैं सफर फैल हुए हैं हमारी जनता तो हम जाए भैया रुसलान की ओर हम जाए हैं तो 6 तारीख जुलाई के 9:30 बजे के न्यूज़ से ओली रफिनाद रही जो रुसलान में वहाँ Oekraïne drone se phin dagi se bhaiya drone se phin dagi se bahut badka skade bhaile drone aangetroffen een van die grootste raffinaderij hai bhi bhaiya aur batai gayi hai ki itna baskadak bhaile udhar yani ki Ruslan yani ki hua ke janta ke mare hai aur is hua ke रफिनार रही दागे है कि इतना होइगे कि देश में आ तेल ना रहीगे भैया अनमिलों रही में खड़ा हुई तेल कीने हैं यहां बताए गए हैगा ब्रांस्टोफ क्रिसिस इन रुसलान उक्रेन से ड्रोन अनफालन सॉर्गन फॉर ब्रांस्टोफ क्रिसिस इन रुसलान तो ऐसे बातचीत है हमारी जनता तेल के बारे में रुसलान में इतना हुआ पे प्रॉब्लम है तो हमारी जनता एगो चिनुआ है अमतनार है ओके दो स्ट्राफ मिले चीना देश में दो स्ट्राफ और चीनीस अमतनार जो 285 मिलियन यूरो इन सख्स तक चोरी करके पर जेब में धरे रहा भैया एक अमतनार है खमीन तक के करप्शन के बहुत जबर करी से और बोले फॉर और दिल फॉर वीक करप्शन नीखन से तक यार है एक अमतनार है फंक्शनर से अपर के इतना फरेक कर रहा मख्त मिसब्रेक से विद वास कर रहा फर्स डिस्टर्ब कर ले रहा देर तक यार ओम खरीकन है सो ओवर देर पीरियड ऑफ देर तक यार कर ले रहा भैया Seven juris 285 miljoen euro hebben aangenomen. Otra corruptie lezen vanaf jaren 1993 tot 2023. Al ook er functie aan werkzaam in de oostelijke staat Nanjing mee. Gedurende deze project bepaalde bedrijven ook contract de wat eraan. Chukulele contract de wat eraan. Op de grond en financieringen hebben verschaft in ruil voor geld en dure spullen. Ik er waren met Chinoake media lekker ze tegen 69 jarige man heeft volgens staatskrant China Daily de doodstraf gekregen vanwege de extreme hoge waarde van de steekpenningen bullen de bijzondere ernstige omstandigheden en de enorme schade die het land heeft toegebracht mensen de Chinoandees met de doodstraf hebben ja Or de rechtbank heeft opdracht gegeven tot de inbeslagname van alle persoonlijke eigendommen van de man. President Xi Jinping begon na zijn aantreden in 2013 grote anticorruptiecampagne. Veel onderzoeken eindigen met disciplinaire maatregelen. De Suriname kahina hoe is het helemaal nani. Suriname is kotel een steekpenning lewehe. और ना खाली स्कूटर ले लेवे बड़े बड़े लोग लेवे हैं एंड खान से वो नौ फ्राई लूप मेंस
ache etrastik pering se blese ba ke koi ke nasunio ke lanti koi ke go baisi gidi baslah kari se bhaiya to sab freya hande hai jab mange korupsi hai jab mange hai जब मांगे हैं चोरी करे हैं सब होवे है हमारी जनता। अब देखो बेल्किए डोनाल्ड ट्रम्प के देश अमेरिका के जीत गए फिर इन से भैया फुटबॉल में, और जो फुटबॉलर्स बेल्किए के हैं अब अमेरिका इसकाकल हो गए हैं, वो सब नाचे हैं फेल पे जैसे ट्रम्प नाचे भैया यहाँ बताए गए। बेल्कि इज इन एक्सैक्ट इन एक्टास Andikito België is na de 1-4 op de Amerikaanse achtste finale van de WK voetbal met geel he. Op het eigen he, België. Nachi se bhaiya hua sab spelers voetbal fel ke Amerika me jaise Trump nachi he. To bal ke bare mein bahut hai batayenge dosto. Aur ya batai hete set landbouw onder druk, maar Nederlandse oogst houdt voorlopig stand mensen. हेते भैया बहुत हेते है तो जो नहीं सौदा पानी यहाँ लगे हैं इन फ्रांकरेक इस स्कांड अलसेख बार नीदरलैंड के आलू प्याज तारव लेकिन दोबारा तो न खुद दोस्तान मर्द तुकोम्स इस उन जी कर में से तो ये बात है हमारी जनता। आप लोग को एक गीत हम सुनाते हैं।

तो दोस्तों एक दो समाचार आपको हम आउट सुनाएंगे तो अपना प्रोग्राम को हम खत्म कर, तो हम चलते हैं एक दो समाचार और आपको हम सुनाने भैया सूरीनाम देश की ओर हम फिर जाते हैं और वहां पे भैया सबन जबरदस्त अक्सी करी से गा क्रिमिनलिटेट के बारे में सिपाही और गैल हैगा इस सब काम बोले हैं ढेर सिपाही गैल अक्सी 3 जुली के शुक्रवार के मेरदर लोकांशी परमारी बो में सब गैले हैं लोकांशी राम गुलाम में गैल है चोरन चपाटी के मिस ब्रोय के बके कोई के ना पाई भैया द हॉट सॉक्ट फरदाख्त से तेज द एक्शन नीट आन गेट्रोफन तो ये चीज भैले सूरीनाम देश में असम बिना बेप के बोले बखरोतिस तो कोर्ट एन इन्फ्लेशन टोनन आन दैट द इकोनॉमी नोख आल्टेड क्वेट्सबार इस ये बात बोले असम बिना माक्रो इकोनॉमी से सिचुएशन ब्लेव सॉर्कलर फोकस अब होकर स्टास इनकम्स्टेन मार इफेंस इफेंसेंसी खफरा फर्स्टेरखन फन बलंगराइके इंस्टिट्यूट के बारे में और जनता हिया बताए गए हैं और सब ताशे हुए तेल सूर के भाई तो जाने हैं का समा खास वेशल नेटवर्क लगाई से तो यहाँ बतावे का दर्द सबुताशे चार रोज में भैले तेल सूर सीट्स का द अंद खास वेशल नेटवर्क उपलोपन बोले हैं फंडालिस्म भैया सूरीनाम देश में तेल सूर दुलवेट को वर्णन फंडालिस्म इंदिरा गांधी वैक में भैले लिफोर्नो बीक है इसमें भैल है टेलीकम्युनिकेशन जींस टेलीसी स्प्रेक फंड सोरक वेकन बोले $3,000 के स्काद भैल उस सबके खास वे इस काबल के बारे में और बतावे वे दून वत इस ओंस मख्त ले बोले है सब ताचे सब कलने माटे बोले है इन सामन वेर के में आउतरेन बफुक्त है अक्सी प्लान टेलीसी रूप बर्कस ऑफ अलर्ट से फरदाख्त अखवितेक इन ओमगेविंग फंड द टेलीकॉम फोरसीटिंगन ये बात है भैया इस सब कबल वा काट दे हुए है दौर के करीब काबल बताई के नीत अनि दैसेंड डॉलर्स अन हेस्टेल कोस्टर मार ओक ऑन खमाक फॉर क्लांट एंड वर्ट्रैकिंग फॉर द ऑन्ट्विकलिंग फॉर ओंस लैंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीत अलीन इन्वेस्टिंग फॉर टेलीसूर दे सब कबल वा खमून काट दे हुए भैया तो कौन चीज तो बराई करियो कुछ बराई ना कर पियो तो ये बात है अब देखो एगो 25 यार का अम्स्टरडम के आदमी vorige week augustus में nationale monument op het dampen klaten over liggen again is now over कुछ फेरफीस लिख दे ओके सिपाही पकड़ी से और फॉर द रेक्टर लेंगे ओके चाहेंगे 895 यूरो कॉस्ट भरे के फेरफिया निकारे के फरवेदर कॉस्टन बोले है कि द प्रो पैलेस्टाइन डेमोस्ट्रेंट स्पोट ऑफ 16 अगस्त में द रोड फेरफ ऑफ द लूज नेवर अगेन इज नाउ नोइट मेर इज न्यू तो दोस्तों चीना में नोटवेयर भैल है नोटवेयर इन चीना सीकर 10 मने हुआ मर गए हैं और बताए गए हैगा अन मंगलवार के देशदाग के भैल है ओमकेफे नोटवेयर दैट इन मिडल एंड ज़ाइडन फ्रॉम चीना ट्रेफ्ट इज अनडुइडलक फॉल्क्स द बरिखतन फ्रॉम द स्टार्स पेस ब्यूरो यूं हुआ वर्दन द स्टीडन आंगेट्रोफन दोर विंस्टोटन हमारे प्यारे प्यारे जनता तो हमारा प्रोग्राम खत्म आने को हुआ है।

Urk Maria, Karel Palop, Lollipop, लागे है तू दोस्तों। और आज भी हम आप लोग को एक दो शेर भी आप लोग को सुनाएंगे। और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है। और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों की चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

और ये जो तेरी पायलों के छनछन है, आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए अरे बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान, आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान।

और जानू मेरी जान और मैं तेरा कुर्बान। कुछ रिमिक्स आज हम आप लोग को सुनाएंगे कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। दोस्तों कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा भैया, ही बतिया है। और कहते हैं चमका न करो जुगनू की तरह रात को ले जाऊंगा मुट्ठी में किसी रोज छुपा करे कि झलक दिखला जाए। आओ हमारा झलक आप लोग रेडियो के माध्यम से।

0: थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा।
1: और झलक दिखला जा हमारे दोस्तों, और अगर झलक दिखलाएगे तो और क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि आई फिर से गुजरा लम्हा याद, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाई उसने, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, हंसे तो थे उसके सामने, देख कर भी ना जाने क्यों फिर से नजरों को चुराया उसने। तो कुछ प्यार की और कुछ शायरी हो जाए दोस्तों, के कहते हैं चेहरे पे मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे। और जाते हैं किशोर दादा के एक सॉन्ग, फिल्म के नाम है लवारिस।

जरूर अपने को जैसे तैसे में क्या होता है दोस्तों, अपने को जैसे तैसे और थोड़ी देत एंदात है कि कहते हैं ना पूछ किसी से ये उल्फत का, ना पूछ किसी से ये उल्फत का कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, मेरे किसी अपने की मेहरबानी है। हमारा दोस्तों चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिश है उसकी जो दिल से समझे हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, तेरे चुनरिया।

तो दोस्तों तेरे चुनरिया और तेरे चुनरिया में क्या हुआ। तेरे चुनरिया में एक दिल दिल को जख्म दे गई, एक दिल दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने का कसम दे गया। लाखों फूलों में से गुना था एक फूल जो कांटों से भी गहरी चुबा दे गया। और कहते हैं गुलाम की महक भी फीकी लगती है, गुलाम की महक भी फिक्का लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कौन सी खुशबू मुझ में बसा गई हो तुम, जिंदगी है क्या तेरी चाहत को सिवा। ये कैसा ख्वाब आंखों को दिखा गई हो तुम, और बचपन बदन पे और सितारे कौन लपेटता है, वो परमा श्री मोहम्मद रफी लपेटता है शमी कपूर से। आओ रिमिक्स सॉन्ग फन रेडियो फॉर होम दौर जॉनी नंबर 1।

और बदन पे सितारे लपेटे हुए और न जाने क्या क्या। और इसके बाद है दोस्तों हम चलते हैं रेक यानी कि हम चलते हैं अगला सॉन्ग के अभी और दोस्तों हम रिमिक्स सॉन्ग के ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि कहते हैं पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, अब मेरे मौत का भी वो फायदा उठाता है। पहले जिंदगी छीन लिए मुझसे, अब मेरी मौत का भी वो फायदा उठाता है। मेरी कब्र पे फूल, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आता है। दैट इज वेयर हार्ट बेस्टर स्ट्रांस, दैट इज हील हार्ट। दिल मेरा बहुत नाजुक है, जरा इसे संभाल कर रखना, तुमसे जुदा ना हो हम, बस इतनी दुआ करना। और कहते हैं और क्या कहते हैं, एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ा जाए कि ये कहते हैं कहो ना प्यार है।

प्यार है, कहो ना प्यार है, ओनली रिमिक्स सॉन्ग कहते हैं। प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, अपनी आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, अपने आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, वो चाहे लाख नफरत करे तुमसे पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम नहीं करना। दिस इज अ टिप फॉर माय बेस्ट लिसनर्स। एक नोग रिमिक्स ड्राए मेंसे, एक नोग रिमिक्स ड्राए, तो आप लोग को हम सुनाते हैं रिमिक्स सॉन्ग, वो है डम डम डम मारो डम दोस्तों।

और दोस्तों डम डम डम डम और क्या था, डम डम ढिगा ढिगा डम मारो दम था। हाँ कहते हैं प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, अपनी मोहब्बत का जिगर आज सारे आम कर दो, और नहीं करते अगर प्यार तो इनकार कर दो, ये लो मेरा मासूम दिल इसके टुटके हजार कर दो, ये लो मेरे मासूम दिल इसको टोर कर हजार कर दो, और मेरा प्यार की पहचान तो ही तू ही तो है, मेरा मेरी मेरा प्यार की पहचान तू ही तो है, मेरे जीने का अमान तू ही तो है, कैसे कैसे बजाएं करे कैसे बजान करे अलार्म इस दिल को, मेरा आशिक मेरी जान तू, मेरी आशिक मेरी जान तू ही तो है। तो आपको कुछ शायरी हम आप लोग को यहाँ से सुनाए हैं और एक ओल्ड गोल्ड सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। दोस्तों ये एक ओल्ड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है दो उस्ताद, आओ मिलकर सुना जाए।

एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत चला। चलिए देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं नए पुराने गीतों के संगम में। हम आपको ये सुना रहे हैं, ये लवली चीज़ सुन लीजिएगा।

क्या बात है, उरित नारायण और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो रात के कार्यक्रम में। चलिए हम आपको एक गीत सुनाने वाले नए पुराने गीतों के संगम में। जी हाँ, नए पुराने गीतों के संगम में। क्या ख्याल है अगर आज मैं आपको ये सुनाऊँ, क्या बात है।

टाइटल सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया उदित नारायण जी और अलका याग्निक आपको सुनाई है लवली गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत हमने सोचा है तो लीजिए, क्या ख्याल है आप?

ना मिलो हमसे, कहीं प्यार ज़्यादा न हो जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम आपको मिलके ये गीत सुना। मैं तो मुकेश इस तरह से फिल्म ठोकर में से निकाल कर।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। निगती फिर सिर्फ तक 1974 का ये गीत मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म ठोकर में से निकाल कर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम जी घनश्याम जी के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए, क्या ख्याल है अगला गीत के बारे में? अगला गीत के बारे में मैं हम आपको ये सुना रहा हूँ, बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने भी नहीं सुने। चलो मिल के सुनते हैं।

रफी साहब की आवाज़ में और सुमन कल्याणपुर साथ दी। यह शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी राज्य के कार्यक्रम में। चलिए, अच्छा अभी थोड़ा समय बाकी है विज्ञापन से पहले, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: वाह
1: क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश हुआ और आपने सुने, उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। वी पिनफाउन FM पिनतनल पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देखते हैं अगला गीत। अगला गीत हम चलाने वाले हैं तो क्या ख्याल है, सुनते रहना ये गाना और नाचते रहना, झूमते रहना, कुछ भी करते रहना।

वाह, प्यार तो एक दिन होना था, होना था, अगर होना था जरूर। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और आप चून है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म धर्मात्मा में से 1975 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म धर्मात्मा में से निकाल कर निकली फैफी सीमित का ये गीत और पेश हुआ फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए ये गीत सबसे पहले आपने सुने थे पंकज उदास की आवाज़ में और वही गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुकेश जी ने ये गीत गाए थे लेकिन निकला नहीं था। तो जब ये गीत निकला पंकज उदास ने गाए हैं तो लोगों समझे वाह क्या बात है, लेकिन कुछ दिन बाद जब मुकेश की आवाज़ में लोग गीत सुने तो जान गए कि हाँ मुकेश जी ने पहले गाया था और बाद में पंकज उदास ने गाया। चलो हम आपको सुनाते हैं।

पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत आपको सुनाया गया फिल्म मोहरा में से निकाल कर। म्यूजिक डायरेक्टर है बीजू शाह। बीजू शाह का कल्याण जी का बेटा है। आज वो कल्याण जी आनंद जो दो हैं दोनों म्यूजिक डायरेक्टर हैं। कल्याण जी का बेटा है। बीजू शाह के साज पर ये शानदार गीत पेश हुआ ओवर फाउंड हिंदुस्तानी।

टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब की हम आपको सुनाए हैं और शंकर जय किशन के साज पर फिल्म प्यार ही प्यार में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये गीत आप सुनिए, बस इस तरह से आ रहा है श्याम जी, हाँ ये गीत।

मैति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने निकाले हैं नेघिनती नेघिन शस्त्र से 1969 से ये गीत। चलिए प्रोग्राम में हम पेश करते हैं क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म धर्मात्मा में से नेघिनती फैफ से इफ तक का ये गीत 1975 का ये गीत क्या ख्याल है। हाँ

एवरग्रीन किशोर कुमार, आपको सुना है ये शानदार गीत नेकिती फैवन से ही मित्र 1975 का ये गीत फिल्म धर्मात्मा में से हमने निकाले हैं। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से।

जी हाँ, तुम बिन रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया ये शानदार गीत काफ़ी प्रचलित था, अब भी है और शायद ऐसा रहेगा भी, यानी बहुत पॉपुलर था, है और पॉपुलर रहेगा। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं राहत फ़तेह अली खान। जी हाँ, राहत फ़तेह अली खान आपको क्या सुना रहा है।

0: राहत फतेह अली खान जी और सुशांत जी मिलके फिल्म दे दनादन में से हमने निकाल कर आपको सुनाई है। चलिए विज्ञापन से पहले हम आपको ये गीत सुनाते हैं, क्या ख्याल है अगर जे ये हम आपको सुनाएंगे।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: वाह क्या बात है, लता जी की आवाज़ में आपने सुने ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के www.faunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है और कार्यक्रम आप सुन रहे जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे एक बार फिर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपको हृदय से स्वागत किया जा रहा है।
1: Geschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden.

मधुमन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। फिल्म साजन बिन सोहागन निगतिन अख्तसेफिन तक येसुदास उषा खन्ना के साज पर हम आपको ये गीत सुनाए हैं। आप चुने फान हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आप कार्यक्रम नज़दीक से बैठ कर सुन रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल पता चला है, तो हम आपको ये सुनाते हैं इस तरह से।

आतिफ असलम आपको सुनाएं। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, हमने ये गीत रखे हैं, क्या ख्याल है? आ रही है सलमा आगा जी। जी हाँ, सलमा आगा जी।

सलाम आगा, आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की कार्यक्रम में, आपको अवश्य अच्छा लगा होगा ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, चलो सुनते हैं ये गीत। हाँ

0: लता जी आपको सुनाए हंस परदेसी और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग ऐप करते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। जैसे अल्फानंदरन के रहने वाला श्रीमान, चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। और क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं
1: के आ गई रुत मस्तानी ओढ़ो।

ढोल सजना ढोल जानी रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं कि राहत फ़तेह अली खान जी, जी हाँ, अपने झड़कने वाले जिया के बारे में क्या कह रहा है। चलो सुनते हैं, बहुत दिन हुए हम भी नहीं सुने कि धड़कते हुए दिल कैसा होता है। राहत फ़तेह अली खान जी।

जिया धड़क धड़क जाए। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या देखते हैं शारदा जी राहत फतेह अली खान के धड़कने वाला दिल को राहत दे सकती है। चलो सुनते हैं।

0: हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम
1: ये वाक्य आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं, इस तरह से देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब आशा जी और कोरस क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार कर दे है करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफ़ी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और मैं तो मुकेश द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेखन तीन सस्त 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। ग्रीन किशोर कुमार।

वाह क्या गीत है, हम आपको सुनाएं शानदार गीत फौन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। जैसे मैंने कहा, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो, और फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम का। जी हाँ, अगर आपने प्रेम की है तो ढाई अक्षर प्रेम का आपको अवश्य मालूम होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो है, ये फिल्म तो आपने अवश्य देखे, फिल्म डर तो आप देखे होंगे। लता जी और उदित नारायण मिलकर आपको ये गीत सुनाते हैं शिव हरि के साज पर। तो आप शायद सोचोगे कि शिव हरि कौन है। शिव हरि वही जो संतूर वादक है, मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, और हरि है हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाता है। इसलिए नाम लंबा था तो छोटा कर दिए शिव हरि के साज पर। और ये शिव हरि, यही दोनों ने फिल्म, क्या नाम है, दिमाग से निकल गया अभी था, अच्छा अभी हाँ, फिल्म सिलसिला में ये दोनों भी साज बजाए थे। चलिए उन्हीं की साज पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

तू मेरे सामने, या लता जी और उदित नारायण मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये। जी हाँ, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है? मेरी कुमार सानू और अलका याग्निक फिल्म बाजीगर में

फिल्म बाजीगर में से निकाले ये टाइटल सॉन्ग पेश किया गया फावनी हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए। प्रेम प्यार की मोहब्बत की बातें, दूर जाने की बातें, बुलाने की बातें, बहुत सारी बातें हो चुकी प्रेम प्यार मोहब्बत में। लीजिए मैं कपड़ों की बात करूँगा तो आप सोच रहे होंगे अरे गंगा क्या हुआ तुम्हें बुखार लगा? जी नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ थोड़ा गला में खराश है लेकिन ठीक है। चलिए मैं कपड़ों की बातें कर रहा हूँ, अगर जब कपड़ों की बातें हुई तो क्या ख्याल है?

0: जी क्या बात है, सुनिधि चौहान, सुनिधि चौहान आपको भी सुनाए हैं। चाहो जाए दिल्ली चाहे आगरा, नहीं करना झगड़ा क्योंकि मिलेगा घाघरा, तो क्या ख्याल है। चलिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं, चलते हैं इस तरह से, सुनिए ये भी एक धमाकेदार गीत है।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय
2: नागिन से बल खाके
1: हाय हाय हाय हाय हाय।

वह क्या बात है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बिहार लूटने के बाद क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ?

0: Good home. Dari kamar betul ya kamar bantu pisalongan habis.
1: अच्छा तो ये वाकई आपने सुने ना जब पड़ोसी के चूल्हे में आग ले ले भैया शानदार गीत हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है देखा जाए फिल्म जीत का, फिल्म जीत में से निकाले हैं, चलो सुनते हैं ये गीत।

वाह क्या बात है यारा ओ यारा, आपको सुनाया गया फोन के कार्यक्रम में। और गाने वाले थे अलका याग्निक जी और विनोद राठौर। चैनल पर आप चून हैं, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम आगे चला रहे हैं और आपको सुना रहे हैं, ये गीत इस तरह से आ रहा है।

कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, आप थोड़ी रेस्ट कर लिए होंगे यानी थोड़े आराम कर लिए होंगे, अगर आराम कर लिए हैं तो लीजिए, हम आपको फिर एक बार स्पोर्ट्स हॉल से दूर रखते हैं ना, इस तरह से सुनिए।

0: found in Sarajevo par aap chune hare kaam jo aapko radio ke sare karana hai aap contact kar sakte hain hamare daktar se 0-5-3-7-5-2-8-8-4-0-4 तार कीजिए फिल्म प्यार मोहब्बत देवानंद शायरा बानू के साथ इस फिल्म में काम किया आशा एंड पद्मश्री मोहम्मद रफी दोनों की मीठी आवाजों में आप सुनेंगे प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी
1: चारों तरफ पानी ही पानी मगर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं
2: भगवान पर भरोसा रखो
1: मैं नहीं मानती तुम्हारे भगवान को
2: लेकिन मैं मानता हूँ
1: मुझे क्या मैं तो आपसे आपके भगवान से और जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ इस तरह तड़प तड़प कर जिंदा रहने से तो अच्छा है कि डूब कर मर जाओ
3: ये क्या कर रही हो
1: छोड़ दो मुझे मरने दो छोड़ दो

दुआ है सच्चे दिल से की गई प्रार्थना भगवान एक बार जरूर कबूल करते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, जिंदगी दी है तो जिंदा रहने का अधिकार भी दूं।

यार मोहब्बत का टाइटल सॉन्ग अभी आपने प्रोग्राम में सुना दोस्तों, शाहरुख खान। शाहरुख ने काम किया प्रीति सिंटा के साथ और फिल्म वीर सारा। आप जानते हैं, आपको मालूम है कि शाहरुख खान बॉलीवुड का सबसे धनी एक्टर है। सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा डॉलर्स शाहरुख खान के है। और साथ ही साथ शाहरुख खान को त्रिनिदाद टोबैगो में वहाँ पर एक क्रिकेट टीम है। शाहरुख खान फिल्म एक्टर से बने से पहले ये एक स्पोर्ट्समैन था और क्रिकेट में बहुत भाग लेते हैं और हमेशा ये पोडियम पे बैठता रहता है। और इसका इंडिया में भी क्रिकेट क्लब है। तो शाहरुख और सेंटा दोनों का फिल्म वीर सारा का सॉन्ग आप सुनेंगे।

यहाँ हूँ। अब की बार दोस्तों फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण का सॉन्ग मैं पेश करूँगा। आप जानते हैं उन दिनों में बीते हुए दिनों की बात है, यारन सीफन तक के जब ये फिल्म रिलीज हुआ सुनाम देश में तो हड़ताल मचाया। फुल हाउस से फिल्म लगभग 2 या 3 हफ्ते लगातार पेश किया गया सुनाम देश में और देवानंद मुमताज के साथ इस फिल्म में काम किया। देवानंद दोस्तों आज जब सितंबर के 24 तारीख है तो 26 सितंबर को इनका जन्मदिन जो जीवित रहते तो अपन जन्मदिन मनाते सितंबर 1923 में ये पैदा हुआ और मृत्यु हुआ 3 दिसंबर 2011 लंदन के एक हॉस्पिटल में। देवानंद का असली नाम था धर्म देव और मुमताज के साथ इस फिल्म में काम किया। मुमताज दोस्तों जिनका बेटी का शादी हुआ है फिरोज खान का बेटा के साथ, तो दोनों के फिल्म का सॉन्ग है हरे रामा हरे कृष्णा का कांची रे कांची हे कांची।

अब की बार आते जाते खूबसूरत सड़कों पे कई लोग मिल जाता है। क्या बात है, जितना भी दूर जाओ घर का रास्ता जरूर मिलेगा, जितना भी दूर जाओ घर का रास्ता जरूर मिलेगा। हे राही चला चल तू मत डर।

इसमें कुछ लोग याद रह जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। वास्तव में दोस्तों ये हमेशा होता रहता है। सड़क पे कई लोग चलते हैं और कभी कभी किसी को देख लेते तो सोचते हैं आदमी को मैं कहीं जानता हूँ, जान पहचान घट लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। पंछी सुर में गाता है,

जैसे हो मेरी दिल रुबा। दोस्तों मनोज कुमार ने काम किया फिल्म अनीता में साधना के साथ, और इस फिल्म का एक गीत है गोरे गोरे चांद से मुख पर काले काले आंखें है। मनोज कुमार का असली नाम हरि किशन था या है, और जब फिल्म में आया तो उनका नाम पड़ गया मनोज कुमार। अबोटाबाद पाकिस्तान में फिल्म जिंदगी निकलिंग सीफ दैर तक में इनका पैदाइश हुआ। हम सब मिलकर सुनेंगे माइटी मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

ये काले काले आंखे के बाद तू चीज है बड़ी मस्त मस्त, उदित नारायण एंड कविता कृष्णा मूर्ति। दोस्तों उदित नारायण बहुत से ड्यूएट गाया है, लेकिन अलका याग्निक के साथ ज्यादा से ज्यादा गीत गाया है। फिर भी कविता कृष्णा मूर्ति के साथ आप सुनेंगे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त।

जो खो गया, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते।

तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। दोस्तों गाता रहे मेरे दिल तू ही मेरी मंजिल। फिल्म गाइड, गाइड का मतलब है हिट्स। देवानंद इस फिल्म में एक हिट्स था और फिल्म का नाम भी इसी तरह रखा गया, गाइड। हसीनों का पुजारी किशोर कुमार एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों की मीठी आवाजों में आप सुनेंगे।

रोहन हिंसानी रूप आप चुन है और यहाँ से आरम्भ होता है क्या हुआ तेरे और दर भड़े गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से।

जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

क्या हुआ तेरे वाला दरभर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरा वाला दर्द भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहन हिंसाइन पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 8 4 से 5 आपको तार करना है।

औरों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नत यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर के पैदा हुआ दीरेंद्र तक ऑक्सीस तक इंडिया का प्लेबैक सिंगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है तमारा। मलेशी से ओल्डर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3500 गाना की ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था नीघ तक में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती गाना एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु की तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना उसके चेहरे पर मत आना उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे किकी म्यूजिक और प्लानिंग कभी नहीं किया, सिर्फ स्टूडियो किया, यानी फरिश्ताइट दिल्ली का स्टूडियो में, यानी फरिश्ताइट में स्टूडियो के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथवतेंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स किकी ने बनाया। लेस्ट लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीहरी नीहे नीहे टक में किकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरफ तरफ पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें किकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे किकी की आवाज़ में बीते लम्हे।

इवनिंग सेशन निघंटक में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्ट किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाया सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद 2008 में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालाद वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तनहा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला, सी साइन अवार्ड 2004 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख के बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी के एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 23 साल के उम्र में इन दैर तक मई 2002 के बाद है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

पहाड़ों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। पर आप ट्यून है, प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है। प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों, फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने ने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, यारा फैफन शेस्तक, सेशन शेस्तक, सीफन शेस्तक, आख्तन शेस्तक, तो निगरी सीफन तक जब ले खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

सरद जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुन है

अफ्रिका हेपी सिसिल फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज़ में नाकातिंग।

No, Mr. Tasif Bux. और तस्वीर बस आपके लिए पेश करेगा केसरिया एक्स काउंटडाउन।

0: परिवार दोस्तों, ये मोक्सी वाला ऐसी नहीं, ये मिसिक मोक्सी है। और मिसिक मोक्सी में ओल चटनी पार्टी फली में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।
1: The world's number one soca chutney band. You're Dilly Nedan, bigging up the boy DJ Rahman Entertainment to the world.

फ्लोर बिना चटनी कैसे बनी? मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

बिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कड़मा अनु ताकि मिनो लोबियू, हा सुमा ताकि मिनो लोबियू, मिलो बयू थ्रू।

हरि ओम। एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरि ओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णदत्त भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम 8 जुलाई 2020 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। जहाँ पर भी जी साल में हो, घर पे हो या टमाटर कार में सफ़र कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है विद हिलफील प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेमाल इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हैं तो आप जरूर तैयार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान टेलीफोन नंबर्स कंटोर 070-365-2247 स्टूडियो कतार का नंबर है 070-362-2770। क्वालिटी ग्रांटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों। एनी तो फरखेत है उनसे क्वालिटी साउट यू खरानसी natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk voelt u zich altijd lekkerder bij Fahon Hindustani Radio, toch? En ze willen absoluut nou een iets in het programma kunnen zijn, als ik er een announcer staat hier van de Fahon Hindustani Radio, the man with the golden voice, the one and only maestro Rajan Dwarka, die ik zeg je, absoluut iets in het programma kunnen zijn. ये अश्वमीद है कि आप भाई राजन जी का प्रोग्राम जो सदियों से आप सभी को सेवा करते आ रहे हैं उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को ज़रूर बेहद पसंद आया हुआ होगा जो काफ़ी ज़बरदस्त था। आज के लिए फूल टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद भाई राजन जी और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिल के मना रहे हो सकता है कि आप विवाह संस्कार की तैयारियां में भी लगे हो। जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सभी के नेक कामनाएं सभी पूर्ण होती जाए। अगर आपके घर पे दुख का खड़ियान पड़ा है आप एक मातम में हो गमी में तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है मातम में शरीक है। ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार हैं आपके तंदुरुस्ती के लिए हमसे मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए चंगा हो जाए बेहतर हो जाए। यानी तो फिर खेत है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को रोजाना सुनते रहना जिंदगी का मजे भी रोजाना लेते रहना एंड नतीलक फन हर्त बीतर स्काप और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना और थोड़ा बहुत हम लोग के बारे में जरूर बातें शाते भी करते रहना फन हर्त बीतर स्काप और आप कामयाब हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां एंड खा फॉर आल्सो डोर बंधु। और हो सकता है कि आप आज या कल कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता के कोई बात नहीं है मूर्ख ईश्वर अंदाख और दिन पे दिन अपने आप पर थोड़ा और जोर तोर से विश्वास बढ़ाते रहना कोशिश भी जारी रखना और हो सकता है
En nooit opgeven hebben we toch geleerd, hè? Dus gewoon bezig blijven doorgaan. To hoe tijd ik aan mij, wie bij jouw zo duider. Aapke kanmoe ko bhi aakar chum sakte hai yaro, dekho bandhu. Dekho mehnat to hai, daulat ka yari hai, abu altijd geleerd. Never give up, brada nanga sisa. So lobby lobby and blessings to all of you. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Dit is weer prewees, weet je, maar ik voel team getrift is zo zwaag. Dan fijne vakantie, geniet ervan. Aur ho sakta hai ki aap desh ko chhod ke videsh yatra pe ja rahe hai, ook op zoek naar een ander soort warmte, to aapko bhi hamare full team ki taraf se shubh yatra, fine vakansi. Tamam log sunte hai Faun Hindustani Radio ko apne vakansi address internet ke lere dwara op een tablet, smartphone of laptop. To aap bhi hum logo ko suniye op uw vakantie adres. Zo bent u en blijft u van alles op de hoogte, hè? Van uw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk Hamari Den Haag Sherka, the one and the only Faun Hindustani Radio, 24 hours at your service, mi guru. प्रोग्राम की शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूँ साथियों, वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ. एक फिल्म ललकार 1972 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहा है शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी. क्या छा लो मुस्कुरा लो महफिल ले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा ना. जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब किसको ये ले जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है. इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं, सरा कहते रहेंगे कि अब तू नाश्ता और तकलीफ, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है ना, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी आगे को बढ़ाना है. तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंत में संगीतकारों का दास्तान नाम कार्यक्रम, कुछ पुराने पुराने नगमे, और 10 से 11:30 बजे रात्रि तक आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द हिटमैन द ही मैन द ग्रेट धर्मेंद्र जी ने काम किया है. बीच में कुछ ज्ञान के बातें, शेर शायरी भी है. तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 11:30 बजे रात्रि तक चलेगा यारो. तो ना 10:30 बजे होना चाहिए, 10:30 बजे रात्रि तक चलेगा क्योंकि 8 बजे से प्रोग्राम शुरू किया ना. तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना यारो. रफी साहब, व्हाट हैथ लीफ डू यू थ्रो सो कॉर्ट है सर.

गले को नहीं जमानो, हो गयो अब रिवाज पुरानो। रेशम वाली साड़ी ला दू तो है फैशनदार बना दू, क्यों

Die Sunderbane uit de film Deur 1966. De Mighty Mukeshike Beautiful Avance me composed by Maestro Roshan Lal Nagrat, meer bekend als Roshan. Aur Alfazit Haman lekhak Anand Bakshi ji ka. 2 minuut reh gaya hai 8:30 bajne mein. Yaro aur aap tune hai Found Hindustani Radio par budhwar ka raatri ka program aap sun rahe hai. Agla bayan ek bar phir लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला स्पेशल फॉर द माइटी मुकेश फैंस नतीलक एक और जबरदस्त सॉन्ग आई डू फिल्म फूलों की सेज विजयंती माला और मनोज कुमार का ये सुपर हिट मूवी आप उन्हीं में से ये अति सुंदर बयान सुनिए आ तू आ जरा दिल में आ हसरत जयपुरी के अल्फाजे और एक महान संगीतकार जो काफ़ी कम फिल्मों में अपना संगीत दिया म्यूजिक डायरेक्टर पे अदि नारायणा राव जी का बनाया हुआ ये ब्यूटीफुल धुन सुनिए लता जी और मुकेश जी के आवाज़ों में.

सुंदर मीठा धुन आपने सुना, ऐड फिल्म फूलों की सेज, आ तू आ जरा दिल में आ, मुकेश जी और लता जी के आवाजों में, कंपोज बाय म्यूजिक डायरेक्टर आदि नारायण राव। 4 मिनट व्यतीत हो चुका है साथियों, 8:30 बजकर, तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना हमारे ज्ञानियों के लिए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ विद्वानों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने कुछ अति सुंदर सुंदर और पॉपुलर सितात लिखे हैं जिंदगी के बारे में, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ ये अशोमीर लेकर, कि इन बातों से हमेशा की तरह तो कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही रहेंगे। तो जरा गौर फरमाए। महाज्ञानी नाट्यूरकुंड ग्रोट मनेर आल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ बातें कहे हैं जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। तो श्री आल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, द वेरल्ड इज अन गफारलिके प्लेक ओम टू वोनन, नीट वनवेगे द मेंसन डी क्वाद विलन, मार वनवेगे द मेंसन डी दार नीट्स टेगे डून। आगे में कहा है हम लोगों का अपना हॉलैंड्स मनेर द हेर अलेक्सेंडर पोला जी ने, वी द एंजस अन एलकार विल क्नोपन मुट फोर ड्यूरेंट इन टाउसेन। सही बात।

फूलों कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, एड फिल्म फिर कब मिलोगी, आदि वर्मन का बनाया हुआ अति सुंदर मीठा धुन, खसरीफ दौर मजरू सुल्तानपुरी एंड खसोंग दौर मैस्ट्रो मुकेश जी और लता जी। 14 मिनट रह गया है 9 बजने में साथियों, अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए, एक और जबरदस्त सॉन्ग है डेकोरेट मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में, और इस बार साथ दे रही है उस जमाने के 70s का मशहूर गाने वाली द ग्रेट वाणी जयराम जी, आदि बर्मन द ग्रेट ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, जिसे हम तो जब भी याद करते हैं तो आंसू भर आते हैं।

Jabberjest Love Song uit de film Chelia 1973. Composed by the great maestro Adi Barman. Aur awaaz ye the Mukesh ji aur Vani Jairam ji ka. 9 minute baki hai saathiyo 9 bajne mein. Aur ek baar phir dil tham lijiye ki ye nagma jo aap sunenge abhi, जो मैं प्रेयर में धर चुका हूँ सुनाने के लिए आप सभी को, बहुत ही दिनों बाद शायद ये नगमा आप सुन रहे हैं। एक द फिल्म फर्स्ट लव, पहला प्यार, 1961, गकम्पोनेर्ड डोर माएस्ट्रो दत्ताराम। लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला आखिरी बयान आज के इस पहला अध्याय में, गीत और गजल ओथ इस गोद का द ग्रेट माइटी मुकेश मेरे प्यार में।

herinner me uit de film First Love 1961, gecomponeerd door Uzzamanika Mashur, music director, maestro Dattaram Rawasta, de mighty Mukesh Jika. साथियों 5 मिनट बाकी है 9 बजने में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए। यहीं तक था आज का पहला अध्याय, गीत और गजल ओथ इज गोल्ड खलिंग मेट संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम जो समाप्त होने का आया। अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद आप नगमे सुनिए तकरीबन 10:30 बजे तक, जिन फिल्मों में महान अभिनेता डगड़े एक्टर द ही मैन धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं। तो ब्रेक के बाद मिलता हूं साथियों, कहीं जाना मत।

हूँ हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के शो में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी का तरफ देखता हूँ, घड़ी के तरफ तो पूरे 9 का वक्त हो चुका है। साथियों, हसीन रात्रि का प्रोग्राम है, अभी तक धूप भी निकला है देन हाँ शहर में, और तापमान तकरीबन 22 और 23 डिग्री के दरमियान में है। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स ससलो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड बदंत फॉर हेट लेस्ट्रन। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे डेंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो फाइट सस्ते दाम क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंद हो उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी की फाइट सस्ते दाम में। तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अवल पता आप श्रोताओं को ऑल इंडिया भर में नहीं मिलेगा यारो। आजमा कर तो देख, सभी रेडियो के कारोबारों के लिए काम के लिए आप तार करिए ये 2 टेलीफोन नंबर्स पर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे टाइम्स कंट्रोल यूर 07-3-5-6-2-2-7-4 दफ्तर कतार का नंबर है, स्टूडियो कतार का नंबर है 07-3-2-6-2-7-7। जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फन हर्त वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में रेकलाम बनाते रहना यार, चर्चा थोड़ा बहुत करते रहना, और हो सके तो अब की बार ढंढोड़ा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है, मिलजुल के हम लोग काम करते हैं यारो। और हम सब तो जानते हैं कि काफी लोग हम लोगों का प्रोग्राम सुनते रहते हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद फूल टीम के तरफ से। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी हम लोगों का या तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है, आप जरा आजमा के तो देख। सभी जानकारी मेंबर बनने के लिए आप तार करें अपने एंड फ्राग नार ऑन्स टीम लीडर द वन एंड ओनली मास्टर जॉनी नंबर 1 Recent hebben we ook onze eigen karaoke team van omroepers uit van Vagon Hindustani Radio natuurlijk, waaronder ik ook een van ze ben. We hebben een paar keer al opgetreden voor het publiek en voor onze vrienden en families, en ze vonden het bijzonder leuk. Dus volg onze social media's van omroepers en ook van onze omroepstation, dan hoort u of ziet u vanzelf wanneer we binnenkort voor u gaan optreden. En dan bent u ook van harte welkom. आप भी आकर अपने परिवार के साथ इस जो छोटा सा मोटा सा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनते जा रहे हैं, आप भी आकर उसमें शामिल हो सकते हैं या आप भी आकर शामिल हो जाए। सभी जानकारी 07-3-5-6-2-2-7-4 पर आप दार करें और नतीलक फ्राग नार मैस्ट्रो जॉनी नंबर 1। एक ही दम बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ साथियों। इन मेन फॉलोइंग एक्सेंडिंग ना जो बीते हुए प्रोग्राम हमारा था ना, उस में हम पहुंच चुके थे फिल्म फागुन तक, जो रिलीज किया गया था 1937 तक में, और इस फिल्म फागुन में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाए हुस्न द ग्रेट ब्यूटी क्वीन एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी के साथ। जया भदीरी, जया भादुरी और जया बच्चन भी इस फिल्म में है, विजय अरोरा जी भी इस फिल्म में काम किए हैं। महान संगीतकार सचिन देव बर्मन के साथ है और गाने लिखे हैं द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी।
दोगा ने मैं आप सभी को सुना चुका था इस फिल्म से। तो अब लेकर चलते हैं ये अति सुंदर बयान जो गाए हैं द ग्रेट आशा जी और किशोर दा के आवाजों में। आप सुनिए कब मैंने ओ दिल के, कब माने ओ दिल के मस्ताने। एड फिल्म फागुन 1973।

Dragoon 1973, S.D. Burman gesaaid per de great Lata Ji op zijn best. 8 minuut बाकी है 9:30 बजने में साथियों अगला बयान आप सुनिए और इस बार लता जी के छोटी बहन उषा मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए ये अति सुंदर बयान जो पिक्चराइज किया गया है जया बहादुरी जी के ऊपर एड फिल्म फागुन 1973

Piava te beautiful song, usciamo in gescher di che beautiful avance me e il film Pagun Orieta uit 1973, Agri Bayan uit de film Pagun. साथियों अपने कर चलते हैं आप सभी को क्योंकि सभी नगमे फिल्म फागुन को का मैं आप सभी को सुना चुका हूं। अब चलते हैं एक फिल्म जो रिलीज किया गया था आल्सो इन 1973 फिल्म की मत, और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है, द ग्रेट एक्ट्रेस मलकाय हुसैन, द ग्रेट रेखा जी के साथ रजेंद्रनाथ और प्रेम चोपड़ा भी इस फिल्म में काम किए हैं। महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ है और गाने

जान, गाने वालों का शहंशाह और बादशाह, हसीन का पुजारी किशोर दा कोलाते प्रोग्राम में साथ दे रही है भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एलपी के साथ पर एडिफिल्म कीमत। सुनो तो नाना, देखो तो आगे, सुनिए।

Mafikaro, oh baby, Mafikaro. Uit de film Kiemet 1973, Lekshmikan Pyarelal Kisajpara Pesun Rehete, Kishorda Aur Latajike Awazumeti Sundar Bayan. बयान आप सुनिए, मैंने पूछा मेरी शादी कब होगी, क्या अल्फाज है यारो, अगर फिल्म कीमत सुनने को जा रही है एक बार फिर द ग्रेट आशा जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साइज पर।

बात है, मैंने पूछा मेरी शादी कब होगी, तो जवाब तो मिल चुके ना आपको, या तो मिलना चाहिए। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आप सुन रहे थे सुंदर बयान आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में। एक दो फिल्म कीमत नेगेटिव 7 मिनट गुजर चुका है 9:30 बजकर साथियों, तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर के चाहने वालों के लिए। अर्ज क्या है, ये कुछ ताजे ताजे भेजे है भैया भूपेंद्र जी ने डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई से थी। एक दिन जब मेरी सांस बंद हो जाएगी, मत सोचना कि चाहत कम हो जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, आज हम आपको याद करते हैं, कल मेरी याद आपको रुलाएगी। किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो, कि उसको जब भी प्यार मिले तो तुम याद आओ। प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाह के भी आपको भुला ना सकेंगे। आप ही तो मेरे लबों की हंसी है, आपसे बिछड़े तो कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। मैं चाहूं सपनों में भी साथ उसका हो, इन हाथों में मेरे बस हाथ उसका ही हो। चाहत मुझे इतनी है उससे के दिल मानता नहीं कोई मेरे बाद उसका हो। पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल की अमानत होती है, हमारा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी को चाहो तो सच्चे दिल से चाहो, क्योंकि ये जिंदगी फिर कहाँ मिलती है। ये था कुछ शेर, आगे के कार्यक्रम में कोशिश करूंगा और कुछ सुनाने को। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, ए हीरो चल आगे बढ़, ये कह रहे हैं आप सभी से हसीनों का पुजारी और संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह द वन एंड ओनली किशोर दा। द फिल्म कीमत रिलीज्ड इन 1973 कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

Beautiful Songs, Nayab Sebiko Kishordaji, composed and arranged by Mahan Sangeetkar Jodi Us Zamane Ka The Great Lakshmikant Pyare Lal aur Alfaze Tha Anant Bakshi Ji Ka. घड़ी की तरफ देखता हूँ यार, तो 16 मिनट रह गया है 10 बजने में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और आप नगमे सुन रहे हैं फिल्म कीमत से, और ये अति सुंदर बयान आप सुनिए जो जबरदस्त अल्फाजों से भरा हुआ है, जरा उस पे जरूर आप ध्यान दें। लाते हैं एक बार फिर क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल, हमारे द इंडियन पॉप म्यूजिक का क्वीन, द वन एंड ओनली आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर ये जबरदस्त सॉन्ग की रंग रूप का बाजार है, अगर कीमत लगाना है तो लगाइए, क्या बात है, मिलकर सुनते हैं। जय बढ़िया सॉन्ग बाय आशा जी।

0: cool song, great song from the movie Came uit 1973, composed by Lakshmi and Pyare Lal aur Avastha, the one and only. Hamare Bollywood film industry ka the queen of pop music, Asha Bhosle ji. नॉमिनेट बाकी है 10 बजने में साथियों. अगला बयान एक फिल्म में कीमत है एक बार फिर आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में. मैं तो पानी पिया था ये क्या हो गया. आगे सुनिए शराब बन गई. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ एक बार फिर आशा भोसले फ्रॉम द मूवी कीमत 1973.
1: Kaçma

कंठ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो वाहन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। अख जुली 2026 हो चुका है साथियों, और जोर तोर से समर टाइम चल रहे है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक बर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सोशल लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतुलक बदंत फॉर एट लेस्टरन। 3 मिनट व्यतीत हो चुका है 10 बजकर। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे, या तो जो भी रेडियो का काम हो, दति देंगत एक है रेडियो स्टेशन नूरग देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट से सिराम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है अपमात पर हम लोग बनाकर जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत से सिराम में। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 9 से 3 से 2 से 7 पर आप तार करें तैनेंस कंतोर उर फन मांडा टू फ्राइडा। दफ्तर का तार का नंबर है और स्टूडियो का तार का नंबर है 9 से 3 से 2 से 7। जो भी रेडियो का काम होना, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू एंड नतुलक कोटि कोटि धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। रिसेंट है वो ओक ऑन एक कर ओक टीम फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो वार हेल फील ओम रूपर्स ओक मे सिंगन दिस फॉलो ऑन्स एंड यू होर्थ Zeer zeker waar wij binnenkort live voor u gaan optreden. En natuurlijk bent u dan van harte welkom. Papi Aker is chota sa or mota sa jo faun Hindustani radio ka parivar ban chuka hai aur bante ja rahe hai, bade ho ja rahe hai. उसमें आप भी आकर शामिल हो जाए। सभी जानकारी 9 से 3 से 2 से 7 पर आप तार करें एंड फ्राग नार ओंस टीम लीडर द वन एंड ओनली मैस्ट्रो जॉनी नंबर 1। वरा के मुताबिक एक हिरम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। साथियों, एक नगमा और रह गया था इस फिल्म कीमत नहीं थी 3 से 7 से सुनाने को, तो जो मैं अपने प्रेयर में रख चुका था। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आप सुनिए एक बार फिर ये जबरदस्त गायक जोड़ी जो है ना, गायक की जोड़ी किशोरदा और आशा भोसले जी का ब्यूटीफुल सॉन्ग, जबरदस्त सॉन्ग। उस जमाने में ये सॉन्ग तो हलचल मचा दिया था। काफी दिनों बाद सुनिए। माफ करो ओ बाबा माफ करो।
1: भागने की कोशिश कर रही थी, डांटियां काट के फेंक दूंगा मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पकड़वा के रहूंगा। चलाओ बास के पास चलाओ।
2: ए सुधा सुनो, मेरी बात तो सुनो।

0: ओ बाबा माफ करो, जबरदस्त नगमा उस जमाने में काफी हिट साबित हुए थे वर्ल्ड वाइड फ्रॉम द मूवी कीमत 1973 कंपोज बाय कल्याण यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और गाने वाले थे किशोर दा और आशा भोसले जी। सभी नगमे फिल्म कीमत का आप सुन चुके हैं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1973 तक में, फिल्म कहानी किस्मत की। और इस फिल्म में एक बार फिर धर्मेंद्र जी ने काम किया है द ग्रेट ब्यूटी क्वीन रेखा जी के साथ, अजीत और राजेंद्र नाथ शेट्टी और कुछ और कलाकारों ने इस फिल्म में भी काम किए हैं। महान संगीतकार जोड़ी द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी के साथ है और गाने लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण जी। तो फिल्म कहानी किस्मत की से आप नगमे सुनिए। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है जो उस जमाने में भी काफी हलचल मचा चुका था, अभी तक लोग काफी पसंद करते हैं। 1973 का ये सुपरहिट सॉन्ग की रफ्ता रफ्ता देखो मेरी आंख लड़ी है एक बार फिर किशोर दा प्रोग्राम में। और कुछ आवाजें सुनिए रेखा जी के इस गाने में भी कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी।
1: ये लड़की है ना, इसे मैं बहुत है।
2: अरे ये क्या कर रहे हो, मैंने ऐसे तो नहीं कहा।
3: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो।

beautiful song, Arre Rafta Rafta, dekho aankh meri ladi hai, uit de film Kahani Kismet ki 1973, composed by the brothers Kalyanji Anandji, awaze tha Kishore da aur kuch Rekha ji ka. सोलह मिनट गुजर चुका है, दस बजकर साथियों, तो कुछ आखिरी शेयर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में. काश उसे चाहने का अरमान ना होता, काश उसे चाहने का अरमान ना होता, मैं होश में रहते हुए अनजान ना होता, ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या कोई पत्थर दिल इंसान ना होता. जीवन तो जीवन है, जीवन की ना कोई प्रीत, कहूं मैं एक बात, जीवन की ना हार है, जीवन की ना जीत. ये दिल था बेकरार तुझ पे, ये दिल था बेकरार तुझ पे, थी चाहत मुझे बेशुमार, तुझसे ही था पहला प्यार. नजर के सागर में उतर गया है, नजर के सागर में उतर गया है कोई, मेरे दिल में घर कर गया है कोई, और उस घर में एक घोंसला बना दिया है कोई. आखिरी शेर साथियों आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, एक अलग सा शायर मुझ में जगाया है, एक अलग सा शायर मुझ में जगाया है, मुझे इस कदर दीवाना बनाया है, पल पल तुझको पास मैं पाती हूँ, पल पल तुझको पास मैं पाती हूँ, एक निजामे उधर ऐ कलम का उभाल आया है. तो ये था कुछ शेयर्स खास करके हमारे शेयर्स की चाहने वालों के लिए. अगला बयान एक जबरदस्त शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान है, थोड़ा दिल को थाम लीजिए. लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला एक बार फिर द माइटी मुकेश जी प्रोग्राम में कल्याण जी आनंद जी के साथ पर फिल्म कहानी किस्मत की 1973 से अति सुंदर बयान आप सुनिए. इंसान हंसे या रोए, जो होना है सो होए बंधु.

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग, लाख करोड़ का दिल चुराने वाला द माइटी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एक फिल्म

भरा हुआ ये सॉन्ग मतलबी सॉन्ग, यह उम्मीद है कि आप सभी को जरूर पसंद आया हुआ होगा। तो साथियों, धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं साथियों कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, यह उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप जरूर को जरूर पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूं। सरनामी संगीत लेकर पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में हमेशा की तरह कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, हमारे बात आप जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। एक से एक टॉप अनाउंसर साथियों आप सभी के सेवा करने में जुटे रहते हैं और ये भी 24 आवर्स एवरी डे एंड एवरी नाइट। तो मुझे आप सभी इजाजत दे साथियों, और हमेशा की तरह जाते जाते तो कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूं, यादगार के याद रह जाते हैं ना। तो कुछ दादा हेमंत कुमार के याद में सुना देता हूं। वैसे मैं तो ज्यादा से ज्यादा दादा हेमंत कुमार ही के गाए हुए गाने छेड़ते हैं, और ये सब मैं आप सभी को कह देता हूँ। ये महान संगीतकार जो दादा हेमंत कुमार है, उसका तो मैं पाँव का एक बूंद का बराबर भी नहीं हूँ यार। लोग कुछ ना कुछ क्या क्या सुना देते हैं, लेकिन उसके आगे मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। इतना बड़ा बड़ा काम जो ये महान फनकार ने किया है, डंक मारान फिल्म नागिन वार है, एट्स द प्राइस हाथ खवान फन द ग्रेट, ढेर काफ़ी लोगों को पसंद आए हैं ये महान संगीतकार के जितने काम वो किए हैं ना। बोलो भैया तो आते बोलते रहेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड दादा हेमंत कुमार के कितने फैंस है। वही महान फनकार के याद में ये हम लोगों का बनाया हुआ संगीत है, उनके याद में ट्रिब्यूट टू दादा हेमंत कुमार, जो बचपन का दोस्त मेरा प्रेम मढ़े जी ने काफ़ी साल हुए है हम लोगों के ज़रिए बनाया था स्ट्रेंजर स्टूडियो में। तो उन्हीं का ये जो धरा है ना यूट्यूब में, मैं कोशिश करता हूँ गायक म्यूजिक डायरेक्टर जिम शिखर शिव प्रसाद का रई अरेंजमेंट है ये गाना, और मुझे भी बहुत पसंद है। महफिलों में मैं काफ़ी बार गा चुका हूँ और गाता रहता हूँ, क्योंकि ये फैशन मुझे और अच्छा लगता है ओरिजिनल से, ना कि हम लोग जब बजाई ले, लेकिन अच्छा बजाया है हमारा बैंड लीडर मैस्टर उज्जैन। तो ज़रूर सुनिए

0: बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तिक का, जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है। और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया, ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है गीता दत्त शैलेंद्र का, और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।
1: मशीन आज मैं बहुत

मिली जहां मिल गई, दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना, और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है, और शहरा का फिल्म में क्या कहते हैं आओ मिलके और

तुम तो प्यार हो सजनी। और लता और मोहम्मद रफी जी ये गाना आपको सुनाए, फिल्म शहरा का। ये फिल्म लिखत इंद्रिय शस्त्र का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना लिखत निघने शस्त्र का है। और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना। और मिलके सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहत होने निहन सस्तक का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या गाते

मेरा प्यार भी तू है और ये बहार भी तू है, फिल्म साथी का ये गाना हमने निकाला है और जिसमें काम किया है विजयंती माला और राजेंद्र ने दोस्तों। और ये गाना है मोहम्मद रफी जी, परमाशी मोहम्मद रफी जी इस गाना को गाया है लक्ष्मीकंद के प्यारे, लक्ष्मीकंद प्यारे लाल के साथ पे। और ये गाना है फिल्म दोस्ती का और दोस्ती के गाना उसने सुनना चाहते हैं तो यहां से हम चला देते हैं और यहां से मेरे दोस्ती।

और दोस्तों मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन, बर्तन नर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।